0: अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल है। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1,500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मेला इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। भारत और ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवीनतम घटनाक्रमों और परस्पर हित के मुद्दों पर बातचीत हुई। कल नई दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिव मोहसिन रेजाई ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ फोन पर बातचीत की। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली PV सिंधु और पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। सिंधु का महिला सिंगल्स में सामना ओलंपिक चैंपियन और दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी कोरिया की एन से यंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। ज्ञान अमृत।

नारद तथा कुलगुरु वशिष्ठ के साथ अयोध्या तथा जनकपुर से आए सभी लोग चित्रकूट में 4 दिनों से निवास कर रहे हैं। श्री राम को देख सभी नरनारी अत्यंत हुलसित हैं। सबकी यही इच्छा है कि वे श्री राम को साथ लिए बिना वापस न लौटें। उन्हें वन में छोड़कर जिन्हें घर नगर में रहना अच्छा लगे, समझ लेना चाहिए कि विधाता उनके विपरीत हो गया है। यदि देव अनुकूल हों, तभी राम के निकट वन में निवास करने का सौभाग्य मिल सकता है। एक दिन माताओं के पास समय देख राजा जनक का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या ने आदर सहित उनका सत्कार किया, उन्हें उचित सम्मान से आसन दिए। दोनों टोलियों के व्यक्ति पुलकित किंतु शिथिल हैं, उनकी आंखों में हैं प्रेम और शोक के आंसू।

विस्तारणं नवंबर मासस्य दश दिनांक पर्यन्तं संपाद्य अंतिम निर्वाचन नामावल्याः प्रकाशनम् अवधारित क्रमेण नवंबर मासस्य षोडश दिनांके विधास्यते। भारतस्य आतिथ्ये विम्स्टेक गृहमन्त्रिणाम् ऐतिहासिके सम्मेलने आतंकवाद मादक द्रव्य अवैध वित्तीय प्रवाहादीनां निवारणाय गभीरा विचारणा समाचरिता। सुरक्षित सशक्त क्षेत्र निर्माणात् सामूहिक सुरक्षा दृढ़ संकल्पः अमित शाहेन पुनरुच्चारितः। केन्द्र प्रशासनेन महाराष्ट्र कर्नाटकयोः इक्षु सम्बद्ध कृषकाणां समस्याः समाधातुं सप्ताहाभ्यन्तरे उच्चस्तरीय समितेः निर्माणस्य घोषणा विहिता। कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहानः तथा उपभोक्तृ कार्य खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ह्यः नवदिल्ल्यां महाराष्ट्र कर्नाटकयोः इक्षु सम्बद्ध कृषकाणां प्रतिनिधिमण्डलैः सह मन्त्रणाम् अकुरुताम्।

0: अनन्तरम् एषः निर्णयः च स्वीकृतः। अस्यां समितौ केन्द्रप्रशासनस्य कर्णाटकमहाराष्ट्रयोः राज्यप्रशासनयोः कृषकसङ्घटनानां शर्करा उत्पादनस्थलानां च प्रतिनिधयः तथा सम्बद्धविषयाणां विशेषज्ञाः वैज्ञानिकाः अपि समाविष्टाः भविष्यन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: यात्रारताः अपि जगद्वृत्तान्तेन सह एकीभूताः तिष्ठन्तु एक्स्पटले @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु। PB शब्दमाध्यमेन च आकाशवाणी वार्ताः शृण्वन्तु।
0: केन्द्रप्रशासनेन सर्वेभ्यः राज्येभ्यः केन्द्रशासितप्रदेशेभ्यश्च नैदानिकसंस्थाभिः प्रदत्तानां सेवानां सौविध्यानां च शुल्कं प्रमुखतया प्रदर्शनं सुनिश्चेतुम् आग्रहः कृतः। अस्य उपक्रमस्य उद्देश्यं रोगिभ्यः स्वास्थ्यसेवासम्बद्धनिर्णयेषु सम्यगवबोधनाय साहाय्यं प्रदानं, शुल्कसम्बद्धविवादानां निवारणं तथा चिकित्सासेवासु विश्वासं वर्धनं च अस्ति। केन्द्रीयस्वास्थ्यसचिवया पुण्यसलिला श्रीवास्तव इत्यनया अस्मिन् विषये सर्वेषां राज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां च मुख्यसचिवेभ्यः पत्रं लिखितम्। केन्द्रीयवाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः 30-2000 वर्षस्य सीमावधिपर्यन्तं भारत ब्रिटेन द्विपक्षीयव्यापारं द्विगुणीकर्तुम् आह्वानं कृतवान्। मन्त्री गोयलः नवदिल्ल्यां भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक व्यापार समित्याः 16 जेट्को व्यापारिक पूर्ण अधिवेशनं सम्बोध्य इदं प्रतिपादितवान्। सतत संवादेन संस्थागत तन्त्रैः प्रवर्धित सहकारित्वेन च भारत ब्रिटेन देशयोः आर्थिक सानिध्यं दृढीकरणाय भारतस्य दृढसंकल्पः वाणिज्य मन्त्रिणा समाहूतः। तेन अभिहितं यत् एतेन उपक्रमेण उभयोः देशयोः उद्यमेभ्यः नूतनाः अवसराः अनावृताः भविष्यन्ति। भारतर्तुविज्ञानविभागेन सूचितं यत् दिल्ली, हरियाणा, चण्डीगढ़, पंजाब राज्यानां केषुचित् क्षेत्रेषु मेघगर्जनपुरस्सरं विद्युत्पातस्य संभावना अस्ति। अद्य आन्ध्रप्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बालिस्तान, मुजफ्फराबाद राजस्थानेषु अपि एतादृश्यः ऋतुपरिस्थितयः सम्भाव्यन्ते। एतदतिरिक्तं पूर्वोत्तरभारते हिमाचलप्रदेश, केरलं, तमिलनाडु, पुदुचेरी एतेषु राज्येषु अपि मेघगर्जनेन सह झञ्झावातस्य संभावना अस्ति इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 7 ने पेश ने मुख समाचार। सर्वोच्च अदालत ने किया है पटाकिया कारण होन वाले हवा प्रदूषण नाल निजिठन ले पाबंदी लगाउन दी बजाय जनतक जागरूकता अति स्वय इच्छा हिस्सेदारी वधेरे प्रभावशाली होवेगी। केंद्र सरकार ने पंजाब अते चंडीगढ़ समेत सारे राज्यां अते केंद्र शासित प्रदेशां नूं क्लीनिकली अदारियां विच मुहैया करवाईयां जाण वालियां सेवावां अते सहूलतां दियां दरां स्पष्ट तौर ते दर्शाउण दे लई किया है। पंजाब विच विशेष तरतीब सोध SIR 226 मुकम्मल सारे 117 विधानसभा हल्कियां दियां अंतिम वोट सूचियां जारी। पंजाब सरकार वालों पहुंच तो दूर वाले इलाकों विच मच्छरां दे लार्वे नू नष्ट करन लई उन्नत ड्रोना दी वरतों दी शुरुआत। पंजाब पुलिस मुखी गौरव यादव ने सारे संबंधित अधिकारियों नू खुफिया जानकारी सांझी करन अते शांति भंग करन दी किसी भी कोशिश नू रोकन लई उच्च चौकसी बनाई रखन दे निर्देश दिते। पंजाब सरकार ने दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह वलों स्थापित यूवी कैन फाउंडेशन नाल पटियाला विखे छाती अते मुंह दे कैंसर दी व्यापक स्क्रीनिंग दा प्रोजेक्ट चलाउण लई इक समझौता सहबंध कीता। माई पागो आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट मोहाली दी

17 महिला कैंडिडेट्स ने NDA दी लिखित परीक्षा पास करके वड्डी उपलब्धि हासिल की थी। ईसन हुन तक दिया मुख खबरा। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुन पेश है जी प्रोग्राम सुनी सवेर। प्रोग्राम लेके हाजिर ने रीमा गुगलानी।

जे ऐप नहीं डाउनलोड कीती ते हुण कर लो। पर वेव्स ऐप ते भी सुन सकदे हो, नहीं तां फिर डायरेक्ट रेडियो दा कन्न मरोड़ के 100.8 MHz, 100.9 MHz या फिर 343.6 MHz, 873 KHz ते सानू सुनो बिल्कुल लाइव। ए है जी सोहनी सवेर ते मैं हाँ तुहाडी आरज रीमा। अज दा दिन है 13 अक्टूबर, बहुत ही ज़्यादा खास है जी। अज दे दिन भारत इतिहास विच कई महत्वपूर्ण मोड़ आए, कई सियासी तब्दीलियां भी हुई और कई महान शख्सियतों की जिंदगी दे नाल अज दा दिन जुड़िया हुआ है। भारत दीआं कुछ अजिहीआं अहम घटनावां दे बारे तुहानूं दसना चाहुंदी हाँ। किशोर कुमार दा देहांत अज दे दिन होया सी 1987 दे विच, ते अज दा दिन 1999 दे विच 13 अक्टूबर नूं साढ़े साबका प्रधानमंत्री मरहूम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तीजी बार प्रधानमंत्री वजों सहु चुकी सी। NDA की अगवाई वाली यह उन्हां दी सरकार सी। 2000 दा ओ सन याद करो जदों पुलाड़ यात्री कल्पना चावला की दूजी उड़ान का ऐलान होया सी। अमरीकी पुलाड़ एजेंसी नासा वालों भारतीय मूल की साढ़े कल्पना चावला STS-107 मिशन दे विच दूजी बार पुलाड़ च गए सी, इहदा अधिकारत ऐलान होया सी। इस दे नाल ही अज दे दिन ही RTI यानी कि सूचना दे अधिकार दे कानून नूं मंजूरी मिली सी। और अज दा दिन 2005 दे विच जम्मू कश्मीर च इतिहासिक अमन सेतु दा दोबारा उद्घाटन होया सी। सो जी ए सी अज दे दिन दा इतिहास, ते हुण वधदे आं कहानी वल।

गाने तो बाद ही कोई फिर तो तुहाड़ा सारें दा स्वागत। आज 3 अक्टूबर है और आज दा दिन है कौमांतरी कुदरती आफत जोखम न्यूनीकरण दिवस। असल दे विच नेपाल दे विच जो हाल ही विच हाड़ आए, इस तो पहला भी हाड़ आए, असी कुदरत दी क्रोपी देखी और कुदरत दा ये कहर कोई पहली बार नहीं है। कहंदे ने कि कुदरत दा कहर जड़ा आ ओ मनुखी हौसले नूं परखदा। जद धरती कंबदी है, जद दरिया अपने हद बन्ने तोड़ के पिंडां दे पिंड रोड़ के लै जांदे ने, घरां दे घर रोड़ के लै जांदे ने, की बंदा ते की चीज़ां, हर एक चीज़ पानी च समा जांदी है। ते जदों आसमान तो बदल नहीं सगों तबाही वरदी है तां पिछे की रह जांदा है? उजड़े हुए घर, अक्खां च जम्मे हुए हंझू। एक कुदरती आफता नैचुरल कलैमिटी सिर्फ अखबारां दीआं या खबरां दीआं सुर्खियां या आंकड़े नहीं है। इस नाल नाल साडे हसदे वसदे घर परिवार उजड़ जांदे है। लोकां दी उमर भर दी कमाई जिहड़ी है ना उह खत्म हो जांदी है। इसे दर्द नूं घटाउण दे लई, मनुखता नूं सुरक्षित रखण दे लई हर साल 13 अक्टूबर नूं विश्व पद्धर ते कौमांतरी कुदरती आफत जोखम न्यूनीकरण दिवस मनाया जांदा है, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। साल 2026 लई इस दा

मुख्य विषय यानी इसी थीम है लचकीलापन सुरक्षा घर तो शुरू होती है यानी रिजिलियंस स्टार्ट्स एट होम। सानू अपने घर दे विच ही इहो जी सुरक्षा दीवार खड़ी करनी पेगी। साडा घर ही साडी सुरक्षा दा पहला किला है जिहनू मजबूत तरीके दे नाल बना के सानू इन्हां आफतां तों बचना पेगा। सब तो वड्डे कुछ अहम तत्थ जो इहदे नाल लुके होए ने जिहदे नाल सानू पूरे वर्ल्ड दी और इंडिया दी हालत ते नज़र मारनी चाहीदी है। जे मैं इंडिया दी गल करां तां इंडिया दा 65% भूगोलिक हिस्सा अर्थक्वेक दे जोखम दे विच आउंदा है एंड 12% इदां आ जिथे हड़ां दा खतरा पहुंचदा है। पंजाब दी गल करिए ते क्लाइमेट चेंज कारण मौसम बदल रहा है, बेवकती मीह पै रहे ने, हड़ ने जमींदोज पानी मुक रहा है और इसे ही क्लाइमेट चेंज दा ग्लोबल वार्मिंग दा सब तो वड्डा कारण तुहानू वी पता है कि अन्नेवा रुखां दी कटाई और इहदे नाल ही तबाही दी ताकत दुगनी वध जांदी है। आंकड़ियां तो परे जे मैं गल करां इक ह्यूमन टच दी तां बंदिया ने किवें तिनका तिनका जोड़ के छत बनाई है और वह जदों हड़ दे पानी च मिट्टी दे खड़ौने वांग रुड़ जावे तो सोचो इस इंसान दे दिल ते की बीतती होएगी। जोखम घटाना जरूरी क्यों है सब तो वड्डा सवाल यह है। साडे घर साडियां इमारतां इहो जिहियां होण जो कि भूचाल रोधक होण और चंगी तरह इस टेक्नीक नाल बनाईयां जाण कि उह बिल्कुल सेफ एंड साउंड रहिण। और सब तो वड्डी ते जरूरी गल सानू कुदरत दे नाल सांझ पाणी पएगी, कुदरत नूं नाराज़ नहीं करना पएगा। रुख लाओ और जो हालात इस वेले पहाड़ां दे विच बन रहे ने ना तो सानू पहाड़ां दा राह रोकना चाहीदा है ते ना ही सानू पानी दा राह रोकना चाहीदा है क्योंकि फिर ये जदों अपनी थां लैण ते आउंदे ने ते इन्हां नूं किसे पटवारी दी किसे फर्द दी किसे इंतकाल दी लोड़ नहीं पैंदी। सो इस करके कुदरत दे नाल सांझ उन्नी ही जरूरी है।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होने कारण

0: अक्तूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्तूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाए रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
1: इंडिया दे विच स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा हो रहे ने और चंगी गल है। हुण ईवी कार्स तुसी देखदे हो है ना, सड़कां ते हुण आम हो गईयां ने। इसे करके जिहड़े ओ चार्जर पॉइंट्स ने ओ तुहानू तकरीबन हर दूजे तीजे पेट्रोल पंप ते दिखाई दे दिंदे आ। यानी इंडिया हुण इस पासे वल नू शिफ्ट हो रहा। लेकिन हुण पहली वारी होएगा कि तुहाडी इलैक्ट्रिकल गड्डी दे नाल ईवी दे नाल बिजली सप्लाई होएगी तुहाडे घर दे विच। IIT बॉम्बे दे विच एक बकायदा इहदे बारे एक्सपैरिमेंट कीता गया। ओ एक्सपैरिमेंट सफल रहा जिहदे नाल केरला दे विच इस दी शुरुआत हो भी चुकी है। दिने बैटरी चार्ज करो, राती तुसी इस्तेमाल करो। तुसी बैटरी जिहड़ी है स्टोर भी कर सकदे हो, बिजली स्टोर कर सकदे हो, उहनू सोलर च चार्ज करके राती उहनू बेच भी सकदे हो। और इह है जी व्हीकल टू ग्रिड, यानी कि V2G। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅਪਲਾਇੰਸਸ ਲੋਡ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਲਾਂਟਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਗਰਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।

0: ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ, ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਰੀਮਾ ਗੁਗਲਾਨੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਣਾਂਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ, 8:15 ਵਜੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਫਰਹਤ ਨਾਜ਼। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यपालों की नियुक्ति की। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर तमिलनाडु और ओपी माथुर केरलम के राज्यपाल होंगे। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुए विस्फोट में लश्कर ए तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हुई। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज से ओडेंस में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक के राज्यपाल होंगे। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ, तस्करी, अवैध वित्तीय लेनदेन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी भाग लेने वाले गृह मंत्रियों और सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी से लगे देशों और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में

0: सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया।
1: 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। हमें विश्वास है वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 trillion की हो जाएगी।
0: निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में 13 जिला निर्वाचन अधिकारी, 70 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 1313 बूथ स्तर के अधिकारी, बीएलओ पर्यवेक्षक और 14,900 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी इस कार्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूचित किया है कि 18 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: जालिम लोशन दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग जालिम लोशन।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.tgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्करे शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसिम के रूप में हुई है। ये सभी पाकिस्तानी अवैध कब्जे वाले पुंछ जिले के हाजिरा तहसील के मंडला मडारपुर के निवासी थे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत सिंचाई अवसंरचना में सुधार की दिशा में अनुकरणीय प्रदर्शन करने के लिए देश के 100 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये उपलब्धि सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने, कृषि गतिविधियों के लिए जल उपलब्धता में सुधार करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में जिले के प्रयासों को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो आधुनिक भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रही है।
4: राजगीर की पहाड़ियों के बीच नालंदा की कहानी इतिहास से निकलकर वर्तमान में आती है। साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस परिसर के उद्घाटन में 17 देशों के मिशन प्रमुख शामिल हुए। नालंदा की पहचान सिर्फ उसकी प्राचीनता नहीं बल्कि ज्ञान को दुनिया के साथ बांटने की परंपरा रही है। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने इसी विरासत को याद किया।
5: नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था, अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की

0: शुरुआत करने जा रहा है। नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं।
1: नालंदा की ये नई यात्रा भी सीमाओं से परे है। आज यहाँ 20 से अधिक देशों के विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। अलग अलग देशों से आए ये विद्यार्थी उस विचार को आगे बढ़ाते हैं जिसे भारत वसुधैव कुटुम्बकम के रूप में देखता है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी बताते हैं कि हम विकास भी और विरासत भी की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: ये जब हम नालंदा विश्वविद्यालय में अलग अलग तरह की कोर्सेज शुरू करते हैं, अलग अलग तरह के चिंताएं जताते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो नई पीढ़ी है उसके माध्यम से उसी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का काम हम करते हैं।
1: पुरानी नालंदा की विरासत आज प्रधानमंत्री के प्रयासों से विकास और आधुनिक शिक्षा की नई ताकत बन रही है, जहां अतीत की सीख भारत के भविष्य को दिशा दे रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निदेशश्री की रिपोर्ट।
3: भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष जून के अंत तक बढ़कर 111 करोड़ 41 लाख से अधिक हो गई है। मार्च 2026 के अंत तक ये लगभग 109 करोड़ 28 लाख थी। इस वृद्धि दर में तिमाही आधार पर 96% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
4: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपनी भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट में बताया कि कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 4,77,00,000 से अधिक वायर्ड इंटरनेट उपभोक्ता और लगभग 106,64,00,000 वायरलेस इंटरनेट ग्राहक हैं। इंटरनेट उपभोक्ता आधार में ब्रॉडबैंड और नैरोबैंड दोनों प्रकार के ग्राहक शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार जून 2026 के अंत तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 2.03% की वृद्धि हुई, जबकि नैरोबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 0.89% की कमी आई। रिपोर्ट के अनुसार भारत के टेलीफोन ग्राहकों की संख्या मार्च 2026 के अंत में लगभग 133 करोड़ से बढ़कर जून 2026 के अंत में 134 करोड़ हो गई, जो तिमाही आधार पर 1.31% की वृद्धि है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देवी वैष्णवी की दैव्य शक्ति असीम वीरता का प्रतीक है और वे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देवी पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं और प्रसन्न होने पर मोक्ष का प्रदान करती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मेला इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले 2022 के राज्य कानून को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश विभू भश्रू और न्यायाधीश के एस हेमालेखा की खंडपीठ ने इस कानून को असंवैधानिक बताया। पीठ ने कहा कि आरक्षण में ये बढ़ोतरी सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले में तय की गई 50% की कानूनी सीमा का उल्लंघन करती है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओरेंस में शुरू हो रहा है। दो ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक चैंपियन और विश्व नंबर 1 दक्षिण कोरिया की आन से यंग से खेलेंगी। तन्वी शर्मा का मुकाबला जापान की नादुसुकी निदेरा से होगा। अश्मिता चालिहा, देविका सिहाग और उन्नति हुडा अपने प्री क्वार्टर फाइनल मैच आज खेलेंगी। वहीं पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और पूर्व विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत आज राउंड ऑफ 32 में अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और राजस्थान में भी कल तक ऐसे ही मौसम की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
3: धन्यवाद फरहत। दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर प्रदर्शनों पर रोक लगाने का समाचार सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं। गृह मंत्रालय की समिति की सिफारिश पर दिल्ली पुलिस ने लगाई रोक। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, कई आंदोलनों के गवाह जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं। 3 नए स्थान तय, रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान, सीबीडी मैदान। समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों को परास्त करेगा मंगरोल। नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ 3रा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत। हिंदुस्तान ने उपलब्धि शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने सऊदी अरब में मिसाइल ड्रोन हमलों की वजह से रियाद एयरपोर्ट के बंद होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, सऊदी से उड़ाने बंद, केरलम के 10 लाख लोगों का त्योहारी प्लान अटका। 51% लोग शॉपिंग करने में ले रहे एआई की मदद, सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर कर रहे शॉपिंग। नवभारत टाइम्स की खबर है, पोर्टलैंड के पास ओरेगन के जंगलों में गुस्सा निकालने का अनूठा शिविर, जंगल में जुटता है महिलाओं का समूह, भड़ास निकालने के साथ खुद को करती हैं शांत, 7 दिन का पैकेज 4 लाख रुपए, अमर उजाला की सुर्खी है।
2: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यपालों की नियुक्ति की। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर तमिलनाडु और ओपी माथुर केरलम के राज्यपाल होंगे। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुए विस्फोट में लश्करे तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हुई। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज से ओडेंस में शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंट 6 गवर्नर्स, राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर मूव टू तमिलनाडु एंड ओपी माथुर टू केरलम। इंडिया टू होस्ट फर्स्ट एवर बिम्स्टेक होम मिनिस्टर्स मीटिंग इन न्यू दिल्ली टुडे। Election Commission launches nationwide outreach drive to ensure no eligible voter is left out of electoral rolls. 4 Lashkar-e-Taiba terrorists killed in landmine blast at LOC in Poonch district of Jammu and Kashmir. India's internet subscriber base crosses 111 crores. And in badminton, Denmark Open 2026 to begin today in Odense. And now the news in detail. President Draupadi Murmu has appointed governors for 6 states. Mr. O.P. Mathur, who is currently serving as the governor of Sikkim, will be the new governor of Keralam. He will replace the current governor of Keralam, Rajendra Vishwanath Arlekar, who has been appointed as the governor of Tamil Nadu. Mr. Dushyant Gautam has been appointed as the new governor of Sikkim. Besides, the President has appointed Mr. Braj Mohan Ram as the Governor of Orissa, Dr. Sudha Yadav as the Governor of Karnataka and Dr. Dhal Singh Bisen as the Governor of Uttarakhand. Their appointments will take effect from the dates on which they assume charge of their respective offices. India will host first ever BIMSTEC Home Ministers meeting in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah will chair the high-level meeting. The meeting underscores the shared resolve to combat terrorism, transnational organized crime, narcotics, radicalization, trafficking, illicit financial flows, and cyber threats. We have a report.
5: Extending a warm welcome to all the participating home ministers and member state delegations, Union Home Minister Amit Shah said that the historic meeting underscores the shared resolve of the BIMSTEC members to strengthen cooperation in tackling common security challenges, including terrorism and organized crime. In a social media post, Mr. Shah said that through decisive coordination, the members will remain committed to building a safer, stronger and more secure BIMSTEC region. The Way of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation, BIMSTEC, is a regional grouping comprising Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal,

0: from 50 to 56%. In badminton, PV Sindhu and the men's doubles duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will lead India's campaign at the Denmark Open 2026, which begins today. Sindhu faces a formidable opening round challenge against Olympic champion and world number one Aung San Young of Korea in women's singles. She will be joined in the women's singles draw by compatriots Tanvi Sharma, Ashmita Chalaiha, Devika Sehag and Unnati Hooda. And now for a look at today's newspapers. It's over to Shagun Chopra.
1: Thank you, Sarabjeet. The news that hawks the limelight today is that of the country's most iconic site for dissent. The Hindustan Times leads with, after 33 years, cops bar all protests at Jantar Mantar. Jantar Mantar no longer a protest site, says the Asian Age. Under the caption, course correction, rupee jumps 96 paise against dollar as measures take effect. Banks seek RBI relief, more time on strict forex curbs, writes the Financial Express. On the firecracker-induced air pollution, the Statesman writes, SC backs balanced approach to firecrackers ahead of Diwali. And finally, the Hindu notes global warming is turning sex reversal in frogs into extinction risk. And with that, it's back to you, Sarabjeet.
0: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu appoints six governors. Rajendra Vishwanath Arlekar moved to Tamil Nadu and O.P. Mathur to Kerala. India to host first ever BIMSTEC Home Ministers meeting in New Delhi today. Election Commission launches nationwide outreach drive to ensure no eligible voters left out of electoral rolls. Four Lashkar-e-Taiba terrorists killed in landmine blast at LOC in Poonch district of Jammu and Kashmir. India's internet subscriber base crosses 111 crores. And in badminton, Denmark Open 2026 to begin today in Odense. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: नमस्कार ए आकाशवाणी खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर पहला इस बुलेटिन दिया खास खबरां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यां लई राज्यपाल नियुक्त कीते ने भारत अज नवी दिल्ली विच बिम्सटेक गृह मंत्रियां दी पहली मीटिंग दी मेजबानी करेगा चोन कमिशन ने सारे योग वोटरां दा नां वोटर सूची विच यकीनी बनाउण लई देश भर विच जागरूकता मुहिम शुरू की थी जम्मू कश्मीर दे पुंछ जिले विच कंट्रोल रेखा नेड़े घुसपैठ दी कोशिश दौरान होए बारूदी सुरंग धमाके विच लश्करे तैयबा दे इक चोटी दे कमांडर समेत 4 दहशतगर्द मारे गए ते डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट अज ओडेंस विखे शुरू हो रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यां लई राज्यपाल नियुक्त कीते ने सिक्किम दे राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर हुण केरलम दे नवे राज्यपाल होणगे केरलम दे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आरलेकर नूं तमिलनाडु दा राज्यपाल नियुक्त कीता गया है ब्रिजमोहन राम नूं ओडिशा दा राज्यपाल नियुक्त कीता गया है जदों कि डॉ सुधा यादव कर्नाटका दे राज्यपाल होणगे डॉ ढाल सिंह विसेन नूं उत्तराखंड दा राज्यपाल नियुक्त कीता गया जदों कि दुष्यंत गौतम सिक्किम दे राज्यपाल होणगे सारियां नियुक्तियां ओहदा संभालण दे तरीकां तों प्रभावी होणगियां भारत अज नवी दिल्ली विच बिम्सटेक गृह मंत्रियां दी पहली मीटिंग दी मेजबानी करेगा मीटिंग विच दहशतगर्दी अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध नशीले पदार्थां तस्करी गैर कानूनी माली लैण देण अते साइबर खतरियां नाल संबंधित मुद्दियां ते चर्चा कीती जाएगी गृह मंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच कहा कि यह मीटिंग दहशतगर्दी अते संगठित अपराध वर्गियां चुनौतियां नाल नजिठण लई बिम्सटेक देशां दे सांझे अहद नूं दर्शाउंदी है उन्हां कहा कि सारे देश आपसी तालमेल राही बिम्सटेक खेतर नूं वधेरे सुरक्षित अते मजबूत बनाउण लई वचनबद्ध ने बंगाल दी खाड़ी बहु खेतरी तकनीकी ते आर्थिक सहयोग पहलकदमी बिम्सटेक इक खेतरी संगठन है जिस विच बांग्लादेश भूटान भारत म्यांमार नेपाल श्रीलंका अते थाईलैंड शामिल ने इसदा उद्देश बंगाल दी खाड़ी नाल लगदे देशां अते आले दुआले दे इलाकियां विच आर्थिक अते तकनीकी सहयोग नूं उत्साहित करना है व्यापार ते सनअत मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश दे नौजवानां नूं नवें विचारां नवीं

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यां विच राजपाल नियुक्त कीते ने। भारत अज नवी दिल्ली विच बिमस्टेक गृह मंत्रियों की पहली मीटिंग की मेजबानी करेगा। जम्मू कश्मीर दे पुंछ जिले दे विच कंट्रोल रेखा नेड़े घुसपैठ करन दी कोशिश दौरान बारूद सुरंग धमाके विच लश्करे तैयबा दे एक चोटी दे कमांडर समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। केंद्रीय सरकार ने पंजाब अते चंडीगढ़ समेत सारे राज्यां अते केंद्र शासित प्रदेशां नूं क्लिनिकली अदारियां विच मुहैया करवाईयां जाण वालियां सेवावां अते सहूलतां दीआं दरां स्पष्ट तौर ते दर्शाउण दे लई किया है। पंजाब विच विशेष गहन सोध SIR 2026 मुकम्मल सारे 117 विधानसभा हलकियां दीआं अंतम वोट सूची प्रकाशित कीतीआं गईआं। पंजाब सरकार वालों पहुंच तो दूर वाले इलाकों विच मच्छरां ते लार्वे नूं नष्ट करन लई उन्नत ड्रोना दी वरतों दी शुरुआत। पंजाब पुलिस मुखी गौरव यादव ने सारे संबंधित अधिकारियों नूं खुफिया जानकारी सांझी करन अते शांति भंग करन दी किसी भी कोशिश नूं रोकन दे लई उच्च चौकसी बनाई रखन दे निर्देश दिते। माई भागो आर्मड फोर्स प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट मोहाली दियां 17 महिला कैडेट ने NDA दी लिखित परीक्षा पास करके वड्डी उपलब्धि हासिल कीती। बैडमिंटन विच PV Sindhu अते मर्दां दी सात्विकता साई राज रंकी रेड्डी ते चिराग शेट्टी दी डबल्स जोड़ी अज तो शुरू हो रहे डेनमार्क ओपन 2026 विच भारत दी अगवाई करनगे। ई संजी हुण तक दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। गाता रहे मेरा दिल इस प्रोग्राम दे लई बस कुछ कु पलां दा इंतजार।
1: ले लो झोले बेगाले ससानू मंगदियां पिछो रोंदियां कंदां दे ओले
2: जेड़ी गल असी बोलचाल दी भाषा च नहीं कर सकदे लोक गीतां दा सहारा लेके बखूबी कह दिंदे आ। लोक गीतां दे वख-वख रूप ने जन्म तो लेके अंत समय तक जिन्हां विच लोरियां

मेरे जीवन साथी दा ये बेहद ही खूबसूरत गीत ओ मेरे दिल के चैन, अपनी सुरीली आवाज़ दे नाल इस गीत नू सदा बहार बना दिता गायक किशोर कुमार हुणा ने। कुछ गीत अजिहे हुंदे ने ना जिन्हां नू सुणदिआं ही दिल दे विच आप ही गुनगुनान लग जाने आ, ते मन विच मिठे सुरां दा अहसास अपने आप ही आ जांदा। ते बिल्कुल अजिहे बहुत सारे गीत ने भारतीय हिंदी फिल्म सिनेमा दे कोल जिन्हां नू अपनी आवाज़ दित्ती किशोर कुमार हुणा ने। रोमांटिक ये गीत, चलो इसी लड़ी दे विच एक होर गीत जोड़ दिंदे आ, खास अदायगी दे लई मिठी धुन दे लई सरोतियां दे दिलां दे राज करन वाला ये गीत आराधना फिल्म तो किशोर कुमार हुणा दी आवाज़ दे विच बहुत ही प्यारा ते वखरे ही अंदाज वाला ये गीत।

पाड़ी ती किशोर कुमार होना ने बखूबी ही इस गीत दे विच अपनी आवाज़ अपना अंदाज दे के इसनू बहुत ही दिलकश बना देता। मज़ेदार अंदाज दे नाल खूबसूरत गीत जिड़ा हमेशा ली यादगार बनिया होया है। इस गीत दे विच उना दा हासा भी है, शरारत भी है, ते बड़ा ही रोमांटिक, जी हाँ, रोमांच दे नाल भरिया होया ये गीत जिड़ा अपने आप ही चेहरियां ते मुस्कुराहट लिया दिंदा है। ते हाँ, बरसात दा, बारिश दा ये माहौल अपने आप ही बना दिंदा है। ससुरां दी बरसात भी तुहाडे ते हो रही है क्योंकि तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम गाता रही मेरा दिल।

इसी अजा प्रोग्राम गाता रहे मेरा दिल। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 9:30 होए ने शास्त्रीय संगीत दा प्रोग्राम सुर साधना। आओ इस दे विच सुनदे हां उस्ताद सतविंदर पाल सिंह हुणा दा सारंगी ते वजाया राग बैरागी।

शास्त्रीय संगीत दे प्रोग्राम सुर साधना च हुणे तुसी उस्ताद सतविंदर पाल सिंह दा सारंगी ते वजाया राग बैरागी सुन रहे सी। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। सवेर दे 10 बज रहे थे। हुण सुनो मुख खबरां।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यां विच लई राज्यपाल नियुक्त कीते। भारत अज नवी दिल्ली विच बिमस्टेक गृह मंत्रियां दियां पहली मीटिंग दी मेजबानी करेगा। चुनाव कमिशन ने सारे योग वोटरां दा नां वोटर सूची च यकीनी बनाउण दे लई देश भर च जागरूकता मुहिम शुरू कीती। पंजाब विच गैन सोध SIR 226 मुकम्मल, सारे 117 विधानसभा हल्कियां दियां अंतम वोटर सूचियां प्रकाशित होईयां। जम्मू कश्मीर दे पुंछ जिले विच कंट्रोल रेखा नेड़े घुसपैठ दी कोशिश दौरान होई बारूदी सुरंग धमाके विच लश्करे तैयबा दे एक चोटी दे कमांडर समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। केंद्र सरकार ने कैंसर विरोधी दवाइयां दे मुनाफे नूं वध तो वध परचून कीमत ते 30% तक सीमित करन दा फैसला कीता है। केंद्र सरकार ने पंजाब ते चंडीगढ़ समेत सारे राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशां नूं क्लिनिकली अदारियां विच मुहैया करवाईयां जाण वालियां सेवावां ते सहूलतां दियां दरां स्पष्ट तौर ते दर्शाउण दे लई कहा। पंजाब सरकार वल्लों पहुंच तो दूर वाले इलाकियां विच मच्छरां दे लार्वे नूं नष्ट करन दी लई उन्नत ड्रोना दी वरतों करन दी शुरुआत। पंजाब पुलिस मुखी गौरव यादव ने सारे संबंधित अधिकारियां नूं खुफिया जानकारी सांझी करन अते शांति भंग करन दी किसे भी कोशिश नूं रोकण उच्च चौकसी बरतन लई निर्देश दिते। माई पागो आर्म फोर्स्ड प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट मोहाली दियां 17 महिला कैडिट ने NDA दी लिखित परीक्षा पास करके वड्डी उपलब्धि हासिल कीती। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस विखे शुरू हो रहा है। इस संजी हुन तक दिया मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। प्रोग्राम हैलो फरमाइश आज दे इस प्रोग्राम दे लई बस कुछ को पलां दा इंतजार।
1: विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वल्लों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
2: ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਰਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੇਡ ਸੰਸਾਰ ਗਿਰਗਿਟ ਵਾਂਗ ਰੰਗ ਬਦਲਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਭੇਦ ਦੱਸਦਾ, ਹਾਕੀ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਨੂੰਨ, ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਮਾਂਚ, ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੇਡ ਸੰਸਾਰ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ 'ਤੇ।

0: और इन्वेस्टर जागरूकता पहल। और जानकारी लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट पे विजिट करो या सभी साथी ऐप डाउनलोड करो।
1: आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो स्वागत करते हैं तुहाडे सारियां दा प्रोग्राम हैलो फरमाइश दे विच। आज दा प्रोग्राम हैलो फरमाइश, जी हाँ, जिस दे विच तुसी हिंदी फिल्मी गीतां दे लई अपनियां फरमाइशां कल दियो। मैं रुपिंदर तुहाडी अज दी मेज़बान, ते नंबर ओही है जी 0181 2342173। ते इस नंबर नूं मिला के तुसी साडे स्टूडियोज दे विच अपनी आवाज दे जरिए पहुंच कर जानी है। आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम हैलो फरमाइश दे विच स्वागत कर दिया, अभिवादन कर दिया, अभिनंदन कर दिया। अज दी महफिल समर्पित है जी उसी आवाज दे नाल जिसने कदी सानू हसाया, कदे मिठे प्यारे एहसास सानू दिते, ते कदे अपने दर्द परे गीतां दे नाल अखां नम भी कीतियां ने। अज दियां फरमाइशां विच गूंजणगे सदाबहार गायक किशोर कुमार होणा दी आवाज दे ओ गीत जिहड़े यादगार बन गए ने। बिना किसी देरी दे संगीत दे इस खूबसूरत सफर दी असी शुरुआत कर रहे हां। उना बोला दे नाल, उना तुना दे नाल जिन्हां ने हमेशा ही साडा दिल खिंच लिया, ते कजिया ही बहुत खूबसूरत गीत जेड़ा कहंदा है कि पल पल दिल के पास।

0: बिल्कुल जी, किशोर कुमार होना ने अपनी आवाज़ के नाल नूर नूर कर दिती हुई है महफिल, क्योंकि उन्होंने सारे ही गीत इन्ने खूबसूरत ने कि साडे सरोते जड़े ने वो फरमाइशा लैके आ रहे ने ते कह रहे ने सारे ही गीत बहुत ज़्यादा सोने। खैर, हैलो।
1: हैलो मैडम, नमस्कार।
0: नमस्कार जी,
1: मैडम राजकुमार शर्मा लुधियाने तो बोल रहे हैं
0: जी। बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार जी।
1: थैंक यू मैडम।
0: ते आज प्रोग्राम भी कुमार साहब ते है, यानी कि किशोर कुमार होना जी ते।
1: हाँ जी,
0: ते उना नू ही याद कर रहे हैं ते दास दियो अपनी पसंद दा उना दा गाया गीत।
1: गाना भी किशोर कुमार जी दा, तुसी अपनी पसंद दा कोई भी सुनाओ। जिन्ने भी गीत अज तक चले आ बहुत ही वधिया गीत चले आ।
0: वाह जी वाह। ते लो जी, इसी लड़ी दे विच एक होर खूबसूरत गीत जोड़ दिंदे आ इना दा गाया, ते बहुत ही बखूबी कमाल गीत।
1: थैंक यू मैडम। थैंक यू जी।
0: जी, कॉल करन दे लई शुक्रिया। लो जी, परिचय फिल्म चों सुनदे आ ये गीत जिहड़ा असी बहुत बार सुनिया है, ते हर बार यही लगदा है कि वाकई बेहद खूबसूरत गीत है।

0: लो जी, खूबसूरत गीतां दा सिलसिला चल रहा है ते ए गीत जेड़े ने किशोर कुमार होना चाहिए ने। ते बिल्कुल आज दा दिन, आज असी उन्हां नू याद कर रहे हैं ते सलाम कर रहे हैं उन्हां दे काम नू। ते साड़े नाल जुड़ गए ने साड़े प्रोग्राम दी अगली कॉलर। हैलो
1: हैलो
0: हैलो जी, नमस्कार।
1: हेलो मैडम, आवाज बहुत कट रही है। हेलो जी, हेलो।
0: बिल्कुल जी, नमस्कार।
1: हां जी, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी, सानू तुहाडी आवाज पूरी पूरी आ रही है जी।
1: अच्छा, थोड़ी थोड़ी कट आउंदी सी, हुण हुण आई है थोड़ी। हां जी,
0: दसो जी अपना शुभ नाम दस दियो।
1: हां जी हां जी, मैं बलविंदर सराह बोल रहा जी, पिंड मोरजन सिखा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान तो जी।
0: जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं तुहाडा प्रोग्राम दे विच।
1: थोड़ा बहुत वेलकम है जी।
0: जी, ते आज असी अपने प्रोग्राम दे विच स्वागत कीता होया है किशोर कुमार होना जी दा, यानी कि उन्हां दी यादां दा, उन्हां दे गाए गीतां दा।
1: हां जी हां जी,
0: ते दसो जी केड़ा गीत सुनोगे?
1: हां जी, उन्हां दी मूवी है जी अपने बंदिश
0: जी,
1: ओ दा सॉन्ग है जी, रंग भरे मौसम ते रंग चुरा के। हां
0: जी, बिल्कुल ठीक है। ते यही पहुंच रहे गीत तुहाडे तक, फोन करन दे लई शुक्रिया।
1: ओके, धन्यवाद।

0: मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने झोने की खरीद लई पंजाब दियां मंडियां विच सारे प्रबंध कीते हन ताकि किसान 17% तक दी नमी वाले झोने की कीमत तुरंत पा सकन।
1: सुक्का झोना लियाओ दाने दाने दी कीमत पाओ।
2: लो जी, इस अंतराल तो बाद एक बार फिर तो स्वागत कर दिया तुहाडा प्रोग्राम हैलो फरमाइश दे विच। हैलो
3: हैलो
2: नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। जी जी स्वागत है जी प्रोग्राम च। शुक्रिया जी। दसो जी फिर गीत केड़ा सुना दिए। जी ठीक है जी, कॉल करने के लिए शुक्रिया।
3: धन्यवाद जी।

0: प्रोग्राम चल रहा जी। हेलो फरमाइश ते वेला हो गया है एक छोटे जहे अंतराल दा।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
2: ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ

0: लो जी, इस अंतराल तो बाद एक बार फिर तो तुहाड़ा स्वागत कर दिया प्रोग्राम हैलो फरमाइश दे विच। ते कर दिया गल अपनी अगले कॉलर होना दे नाल। हैलो
1: हैलो भैन जी, सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत स्वागत कर दिया जी। हैलो, लो जी, हैलो तो बाद उन्हां दी आवाज़ जिहड़ी है साडे तक पहुँच नहीं कर पा रही, ते पर तुहाड़े तक जिहड़े गीत ने ना उन्हां दी पहुँच असीं बिल्कुल भी खारिज नहीं करनी, रुकनी नहीं है, ते तुहाड़े तक पहुँचा लैने ने खूबसूरत गीत। ते हाँ, एक खूबसूरत गीत होर सुनाण तो पहलां किशोर कुमार होना जी का एक किस्सा। बिल्कुल जी,

हेनरी जिन्नी नटखट शख्सियत जिन्नी दिलचस्प शख्सियत उन्हें ही किसे भी इन्हां दे निराले हुंदे सी। एक मशहूर किसे दे मुताबिक एक बार एक फिल्म दे निर्माता ने उन्हां नूं पूरी फीस देण दी बजाए अद्धे पैसे दिते ते अगले दिन किशोर कुमार जी सैट ते अद्धी मुछ मुनवा के आ गए। उन्होंने बड़े मजाकिया अंदाज च कहा कि जे पैसे अद्धे ने तां फिर शूटिंग भी अद्धे चेहरे दे नाल ही करा लो। ते इह दिखाउंदा सी कि उह किन्ने बेबाक सी ते नाल हसमुख भी सी। ते इसे तरह दे उन्हां दे बहुत सारे किस्से जिहड़े फिल्मी जगत दे विच मशहूर होए उन्हां दीआं यादां नूं हमेशा दे लई आबाद कर गए। ते यादगार इस गायक दा ये खूबसूरत जिहड़ा नगमा उह असीं तुहानूं सुना रहे हां मिस्टर एक्स इन बॉम्बे इस फिल्म दे विचों।

0: न्यू इकॉनमी फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है।
1: पावर इज नॉट जस्ट एबिलिटी टू मूव अहेड, इट इज ऑल्सो द एबिलिटी टू एम्पावर अदर्स टू मूव अहेड। भारत का मानना है कॉम्पिटिशन जरूरी है, लेकिन कंपेशन भी होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान युग में डिजिटल शक्ति इस बदलाव के प्रमुख चालकों में से एक बनकर उभरी है और इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए अधिक से अधिक अवसरों के द्वार खोले हैं। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास ये सुनिश्चित करना है कि भारत की क्षमताएं अन्य देशों के लिए भी अवसरों के नए द्वार खोलें।
1: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से स्टार्टअप्स के लिए भारत के पारिस्थितिकी तंत्र का काफी विस्तार हुआ है और स्टार्टअप्स की संख्या 2,50,000 को पार कर गई है। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्पों को उजागर करती है। मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूचित किया है कि 18 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। नेपाल में आई बाढ़ के कारण मध्य क्षेत्र में पैदल यात्रा के रास्ते और पुल बहने से विभिन्न स्थानों पर 100 से अधिक विदेशी ट्रैकर्स फंस गए हैं। काठमांडू से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम में गोरखा जिले में तड़के हुए भूस्खलन के बाद आज अधिकारियों ने 12 विदेशियों सहित 321 लोगों को सुरक्षित बचाया। सेना ने कहा कि नदी का जलस्तर कम होने के बावजूद बचाव अभियान कल भी जारी रहेगा। दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर यातायात पुलिस ने परामर्श जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आज दिनभर यातायात प्रभावित होने की संभावना है। कई जगह यातायात मार्ग परिवर्तित किया जा सकता है। इनमें मिंटो रोड, मंडी हाउस और पटेल चौक गोलचक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर, सरदार पटेल मार्ग और कनॉट प्लेस आउटर सर्कल शामिल हैं। यातायात पुलिस ने प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने, मार्ग बदले जाने के संकेतों और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडिया वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन के 11:05 बज रहे ने ते हुण समा हो रहा तुहाडा मन पसंद प्रोग्राम पेश करन दा, जिसका नाम है तमक जलंधर पैंदी। जी दोस्तों, इस प्रोग्राम नू रोज़ाना तुसी इसे वेले सुनते हो ते इस प्रोग्राम विच तुसी सुनते हो अपने मनपसंद गीत सानू वट्सअप दे जा रही है। सो वट्सअप दे जरिए तुसी अपने मनपसंद पंजाबी गीतां दी फरमाइश साडे कोल कर सकते हो, अपने मनपसंद दिल दे करीब गाने सुन सकते।

करना की है व्हाट्सएप पे जाके एक नंबर डायल करके ते सानू मैसेज करो, अपना नाम, अपने शहर का नाम, गीत दे बोल टाइप करके भेजो जिहड़ा गीत तुसीं सुनना चाहुंदे हो, या फिर उस गायक कलाकार का नाम भी टाइप करके तुसीं सानू भेज सकते हो जिसते गाए हुए गीत तुहानू बहुत पसंद ने। सो फोन नंबर नोट करो 9465536077 यानी 9465536077। सो साढ़े को सिलसिला जारी हो जाएगा जदों फरमाइशा साढ़े तक पहुँच जाएगियाँ, असी उस वेले थोड़ी फरमाइशा थोड़े तक पहुँचावे। अज इन्हों फरमाइशा थोड़े तक पहुँचाने का सिलसिला थोड़ी दोस्त वीनस नाल है थोड़े। सो प्रोग्राम का शुरुआती गीत थोड़ा पेश कर जा रही हाँ, तो नाल दे नाल टाइप कर दो अपने मनपसंद गीतों के बोल या गायक कलाकार के नाम, तो मैं थोड़े जो फरमाइशा ने थोड़े तक पहुँचाऊँगी। सो आओ हूँ सुनते हैं प्रोग्राम का शुरुआती गीत।

जी दोस्तों, तमक जलंधर पहंदी प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का शुरुआती गीत असं सुन रहे सी गुरदास मान की आवाज़ विच, ते हुण सिलसिला शुरू होने जा रहा जी तुहाडियां फरमाइशां तुहाडे तक पहुँचाने का। सो पहली फरमाइश सानू आई है जी चंडीगढ़ तो भेजण वाले ने सतीश नेजा, बिमला नेजा, शिफाली शैफी, मास्टर डेविस। इन्होंने फरमाइश की आशा भोसले के गाए हुए गीत को सुनने की। मनजीत ते जगजीत फिल्म चो जो लिया गया हो जरूर सुनावांगे। तो इसे गीत की फरमाइश सानू की है जी सतीश कुमार बंसल ने पिंड सावंत खेड़ा नेड़े मंडी डबोवाली तो यह गीत सुनना चाहते हैं। अगली फरमाइश सानू आई है जी जिला रोपड़ पिंड पक्कू माजरा ननुआ फार्म तो। फरमाइश भेजने वाले ने सुरिंदर सिंह, कुलवंत सिंह, सुखजोत सिंह, भुपिंदर कौर, मनजोत कौर, तो इन्होंने बहुत सारे साथी। अगली जी फरमाइश सानू आई है जी पिंड कुम्हार हेड़ा सहारनपुर तो आई है। भेजन वाले ने फरमाए सैयद मंसूर, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया, आफिया इब्राहिम, सदाम। इन्होंने भी सेम गीत की फरमाइश की है। तो अगली जी सू फरमाइश है जी स्टेशन रोड जमशेदपुर तो आई है। तो फरमाइश भेजन वाले ने हरजिंदर सिंह पाटिया, एंजल पाटिया, सोनू पाटिया, पपी पाटिया, तमन्ना पाटिया, तो इन्हों पूरे परिवार वालों फरमाइश आई है। अगली जी फरमाइश आई है जी कुलवंत सिंह पोतरा लवराज सिंह औलत औलखुर वालों, पिंड का नाम नहीं लिखा, सिर्फ इन्होंने फिरोजपुर तो लिखा। अगली जी फरमाइश है जी टाला वाला बौदला जिला फ़ाज़िलका तो। यह फरमाइश सानू भेजिए अमीर चंद, नवदीप चतरत, अरनव चतरत, लाजवंती ते अनीता रानी होरा वालों। सो अगली जी फरमाइश आई है जी सानू यह आई है जी पिंड कपूर शाह खुब्बण जिला फ़ाज़िलका तो। भेजन वाले ने फरमाइश बलतेज, नवजोत, हरमन, हैरी, हैप्पी ते पूरा परिवार। अगली जी फरमाइश सानू आई है जी ये फरमाइश आई है शेरपुर थाना जिला संगरूर, मिंटू सप्पल, अमनजोत सिंह सप्पल, बिंदर खेड़ी, परमजीत सिंह ते पूर्वा तुरी होरा वालों आई है। सेम फरमाइश गीत दी कर रहे ने। अगली जी फरमाइश है स्वर्ण सिंह पिंड दौलेवाला जिला मोगा तो। इन्होंने भी फरमाइश की है पंजाबी गीत सुनने की। अगली फरमाइश आई है जी सानू मलोट पंजाब तो भेजण वाले ने फरमाइश राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंढी शर्मा, सौरव शर्मा, साइना शर्मा ते स्वीट मास्टर निवान शर्मा होरा वालों। अगली फरमाइश है जी पिंड टाणी लाल खान नौहर ते ज भेजन वाले ने फरमाइश जावेद खान, इमरान खान, सीमा बानो, विनोद खान ते उन्होंने बहुत सारे साथी फरमाइश भेज रहे हैं। अगली जी फरमाइश है जी मलोट तो भेजन वाले ने फरमाइश कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमन गिल, बलजीत सिंह कनेडा तो, दिशा मोला, जगतार जदगा तौला खिंगरा तो। सो इन सब की फरमाइश पूरी करते ते नाले इन्हां नूं सुनानी आ आशा भोसले की आवाज़ विच एक गीत।

0: जदू जदू भी बने रे भुलिका मैनू तेरे सोवे मेरे सजना
1: जी। तमक जलंधर पैंती प्रोग्राम तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो। बहुत सारिया फरमाइशां साढ़े कोल पहुँच रही ने, सिलसिला जारी है। हुण अगली फरमाइश ताड़े तक पहुँचा जा रही सी, तो यह फरमाइश सानू आई है जी हरजीत कैंत मौजी होर वालों। तो यह फरमाइश भेजी कलोनी डब्बा लुधियाना तो। इन्होंने कहा जी इन्होंने फरमाइशी गीत सुनाया जाए मनमोहन वारिस का कोई भी। सो मनमोहन वारिस के गाए हुए गीत में ही सुनना चाहते हैं। पदमा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश तो भेजन वाले ने फरमाइश। सुदर्शन शाह, पलवी शाह, प्रखव शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र शाह, इन्होंने भी यही फरमाइश की। अगली फरमाइश सानू आई है जी मेन बाजार शेरपुर थाना संगरूर तो भेजन वाले ने फरमाइश। मिंटू, अमनजोत ते रमनजोत। अगली फरमाइश सानू आई है जी पिंड खोखरा वाली श्रीनगर तो, श्री गंगानगर तो भेजन वाले ने फरमाइश। विनोद बरासा, विशाल बरासा, विकास बरासा, रोशनी बरासा ते शगुन बरासा। अगली फरमाइश सानू आई है जी गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली तो, वह भी फरमाइश कर रहे हैं जी मनमोहन वारिस के गाए हुए गीत को सुनने की। अगली फरमाइश है जी भोपालगढ़ राजस्थान तो भेजन वाले ने फरमाइश। धर्मेंद्र चिंपा, कमल चिंपा, ईशान ते पूजा चिंपा तो इलावा इन्हों का पूरा परिवार। अगली फरमाइश जोड़ी आई है जी सानू सतनाम सिंह गिल होर वाला हुई है जी पिंड पक्की खुर्द फरीदकोट तो। अगली फरमाइश सानू भेजिए अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर हो रहे थे। फरमाइश आई है जी नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा तो। अगली फरमाइश भेजन वाले ने राजकुमार शर्मा, स्मृति शर्मा, मानविश, प्रगत, जगदी, जिनेश, ये फरमाइश आई है जी सानू लुधियाना तो। अगली फरमाइश सानू भेजी है जी कलीम रोड और गोबिंद नगर नवाज शहर तो भेजन वाले ने फरमाइश। सुरिंदर सिंधु, अनीता संधु, रोहित संधु, रितेश संधु, शिखा संधु, प्रतीक्षा संधु ते मैक्स होरा वालों। अगली फरमाइश है जी पिंड बांडी वाला फाजिलका पंजाब तो भेजन वाले ने फरमाइश। क्रियंश बांगड़िया, योगेश बांगड़िया, ओम बांगड़िया, रजत ते बेबी गरिमा बांगड़िया। अगली फरमाइश आई है जी सानू गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली तो भेजन वाले ने फरमाइश। वीना मुस्कान, मस्कीन, तुलसी मस्कीन, आशा राजा, चैतन्या मस्कीन, मेघा मस्कीन, डब्बू सम्राट। चंडीगढ़ तो ही फरमाइश भेजिए राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु ते रिधान खुराना होरा ने। अगली फरमाइश सानू आई है जी रावर करनाल तो भेजन वाले ने फरमाइश। ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया ते इन्हे बहुत सारे साथी। अगली फरमाइश आई है जी वरिंड खेड़ा, वड़िंग खेड़ा पंजाब तो भेजन वाले ने मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। एक होर फरमाइश सानू आई है जी पदमपुर तो भगवान दास तनेजा, पवन कुमार, योगेश तनेजा, आस्था तनेजा, मोहित मक्कड़ ते मुखिम जी। सो इन्हां सब की फरमाइश पूरी करते हैं। तो आओ तुहानू सुनानी आ मनमोहन वारिस की आवाज़ में एक गीत।

सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, रितिक, बलवीर सिंह ते इन्हां दे बहुत सारे साथी फरमाइश कर रहे हैं। अगली फरमाइश है जी लवई छत्तीसगढ़ तो पिचल वाले लिए फरमाइश, गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी। अगली फरमाइश है जी कुंडी सैक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान तो पिजन वाले ने फरमाइश, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गैरवी ते बेबी बाय हिमांश। अगली फरमाइश सानू भेजी है जी शाहजी नगर देगलू जिला नांदेड़ महाराष्ट्र तो भेजन वाले ने फरमाइश, संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या ते सविता भाकरे। अगली फरमाइश सानू आई है जी महेश नगर नाभा तो भेजन वाले ने फरमाइश, सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमन्नत ते इन्हां दे बहुत सारे साथी। अगली फरमाइश आई है जी अलीका तहसील डब वाली तो भेजन वाले ने फरमाइश, रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सरबजीत लखोत्रा, रानी सोनू ते रजनी होरा वालों। अगली फरमाइश है जी सैक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा तो भेजन वाले ने फरमाइश, विनय मोहन खान खार, मीनाक्षी पलोमा ते डॉक्टर ईशानी। अगली फरमाइश है जी पिंड तमोट जिला लुधियाना तो भेजन वाले ने फरमाइश, बूटा बिंदर, प्रगट सिंह धालीवाल, पारसो नरेंद्र बीपा, बेअंत सिंह ते हेयर ड्रेसर शिंडा। अगली फरमाइश है जी सानू डाबकी रोड अकोला तो भेजन वाले ने फरमाइश, सुशीला देवी मंदुकर, सदानंद मंदुकर, कुमार गौरव मंदुकर, आरव ते अर्पिता होरा वालों। अगली फरमाइश है जी सानू अमरीक सिंह टेलर मास्टर जलान जिला संगरूर तो, ते एक होर फरमाइश सानू आई है जी रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान तो भेजन वाले ने फरमाइश, जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक ते सारा डागला परिवार। अगली फरमाइश पिंड जंड वाला नेड़े सादिक जिला फरीदकोट तो भेजन वाले ने मुख्तार सिंह संधु, रेशम फौजी, करम संधु सरपंच, हरजोत सिंह, जगपाल सिंह ते इन्हां दे बहुत सारे साथी फरमाइश कर रहे ने। सुरिंदर कौर दे गाए गीत नूं सुनन दी अगली फरमाइश है जी पिंड सारागढ़ मलौट तो भेजन वाले ने फरमाइश, तरसीम सिंह सैकटरी, गुरसिमरन वीर कौर, हुसन मान, जसवीर कौर, सरदार बलकार सिंह ते इन्हां दे बहुत सारे साथी। अगली फरमाइश है जी कृष्ण लाल, सिमरी देवी, मनोज कुमार, पुष्पा राणी, शैलेंद्र कुमार होर ने फरमाइश भेजी है जी पिंड सावंत खेड़ा नेले मंडी डब वाली तो। सो इन्हां दी फरमाइश पूरी करदे हां ते आओ आपां वी सारे सुनदे हां सुरिंदर कौर दी आवाज़ विच इह प्यारा जिहा गीत।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होने कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाए रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
3: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।

फरमाइश है जी हाँ जी इशफाक कोलामनी मोहम्मद उमर कासमी ते हाजी अयूब शहरी होरा वल्लों। अगली फरमाइश सुनाई जी पिंड चंद्रमारी ते भेजन वाले ने फरमाइश मंगत राम जगदीश रानी संदीप मिढा ममता रानी अभिषेक मिढा ते दिव्या होरा वल्लों। अगली फरमाइश आई है जी सानू जम्मू तो ये फरमाइश सानू भेजी है जी नेक राम यशपाल खेदू राम बाबा राम ते उन्होंने बहुत सारे साथियों वालों। अगली फरमाइश सानू आई है जी ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर रहा मेहरा जहां होरा वालों ते फरमाइश सानू भेजी है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड तो। अगली फरमाइश आई है सानू मनीला फिलीपींस गंगासर बाजार करतारपुर तो भेजन वाले ने फरमाइश मदन लाल लहर सरबजीत लहर संजू लहर नीतिका लहर अजय लहर एंजल लहर लाडला पोता अनवर लहर होरा वालों। अगली फरमाइश आई है जी ज़िला मुरादाबाद पिंड दहलापुर उत्तर प्रदेश तो भेजन वाले ने फरमाइश मोहम्मद फरमान मोहम्मद सलमान मोहम्मद इरफान मोहम्मद इसरार ते नरगिस खातून होरा वालों। अगली फरमाइश आई है जी सानू बिल्लीमार जलालाबाद तो भेजन वाले ने फरमाइश प्रेम खुराना परवीन अलीशा अरमान राकेश ममता अनन्या ते अंकुशा खुराना होर वालों। सो इन्हें फरमाइश पूरी करते हैं तो आओ सुना इन्हों शमशाद बेगम ते मोहम्मद रफी की आवाज़ विच ए प्यारा जिहा गीत।

0: पटना ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास ये सुनिश्चित करना है कि भारत की क्षमताएं अन्य देशों के लिए भी अवसरों के नए द्वार खोलें।
1: इनोवेशन की पावर भी ऐसी ही है, एक आइडिया को प्रोडक्ट में बदलना, एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलना, ये अपने आप में एक बड़ी क्षमता है। लेकिन जब यह अवसर समाज के अधिक से अधिक लोगों को मिलता है तो शक्ति का संतुलन बनता है।

0: पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सहायता की है।
1: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो, और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: श्री मोदी ने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2000 के बाद से स्टार्टअप के लिए भारत में काफी विस्तार हुआ है और स्टार्टअप्स की संख्या 2,50,000 को पार कर गई है। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगे। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच पर्यटन भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत में ले लिया है। ये लोग राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया था। पूर्वी दिल्ली में 3 नए प्रदर्शन स्थल रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान सूचित किए गए हैं। नेपाल में आई बाढ़ के कारण मध्य क्षेत्र में ट्रैकिंग और पुल ढहने से विभिन्न स्थानों पर 100 से अधिक विदेशी ट्रैकर्स फंस गए हैं। काठमांडू से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम में गोरखा जिले में तड़के हुए भूस्खलन के बाद आज अधिकारियों ने 12 विदेशियों सहित 321 लोगों को सुरक्षित बचाया। सेना ने कहा है कि नदी का जलस्तर कम होने के बावजूद बचाव अभियान कल भी जारी रहेगा। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगी। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत भी आज अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक में आज 0.6% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 433 अंक की वृद्धि के साथ 72,357 पर था, जबकि निफ्टी 22,490 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडी वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन के 12:05 बज रहे ने। आओ सुनते हैं पारिवारिक प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: एक इंजीनियर बना और उस तो बाद एक तरह अच्छे मुकाम ते हासिल करके असी प्रिंसिपलशिप एजुकेशन दे विच आईए। तो उन्होंने मेरे लिए ये सपना वेख्या और मेरा सपना सी कि मैं एक केमिस्ट्री दी लेक्चरर बना, जिस जिवें कि मेरे माता पिता दोनों बीएससी बीएड मेडिकल सीगे, तो मैं भी वही चीज़ ऑप्ट करना चाहती सी। बट मेरी मदर का सपना ये सीगा कि मैं इंजीनियरिंग वाल नू जावा और इंजीनियर बन के विखावा। फिर असी उही सपने वाल चल पे जिन्होंने
1: जी
0: सानू पाल पोस के इन्ना वड्डा किया है, इन्नी पॉजिटिव सोच दिती है, ते उन्हां दे सपने पूरे करन च सानू होर खुशी मिलती है। ते इस तरह मैं फिर इंजीनियरिंग कीती। आई हैव डन माई बीटेक
1: जी
0: इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और मैं बीटेक करन तो बाद मैं एज अ पोजीशन होल्डर सीगी, तो मैनू उस टाइम थे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नहीं, इट वाज अंडर पीटीयू,
1: जी
0: ते उन्होंने मैनू नाल ही जॉब ऑफर करती, ते मैं उत्थे 6 महीने एज अ जूनियर प्रोफेसर काम किया।
1: जी
0: और उस तो बाद बाहरों कंपनीज आंदियां सीगियां, तो सानू प्लेसमेंट्स मिल गईयां और मेरी प्लेसमेंट्स 2-3 कंपनीज दे विच हो गई, जिथे कि उदे विचों मैं चूज किया लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक, जेडे कि मेरे माता पिता ने फिर साथ दिता ते मैनू मुंबई भेजिया। उत्थे मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 साल काम किया।
1: जी
0: ते उस तो बाद फिर मेरे माता पिता दे पॉजिटिव सोच नाल मेरी मैरिज हुई, अते मैं फिर अपनी सिटी दे विच अपना डिसीजन लेके वापस आ गई। बट एज अ इंजीनियर वो चीज़ मेरी जॉब छुट गई मेरे तो। हुन एज अ मैरिज हैपन्ड एंड देन आई एम ब्लेस्ड विद 2 सन्स,
1: जी
0: ते मैं हुन अगे काम करना चाहती सी। उस तो बाद मैं फिर एजुकेशन फील्ड विच आई, ते लास्ट इस प्रिंसिपल बनन तो पहला लास्ट 10 ईयर्स मैं सेंट जोजो बॉयज़ नाल एज अ सीनियर कंप्यूटर टीचर काम किया।
1: जी
0: और हर स्टेप ते एक लेडी मेरे लिए एक पोजीशन देन वास्ते मेरी सपोर्ट बनी,
1: जी
0: चाहे कभी मेरी माता, कभी मेरे मदर इन लॉ, कदे मेरे बॉसेस, ते कदे साडे स्कूल दे प्रिंसिपल।
1: जी
0: हर मोड़ ते मैनू एक लेडी ने इंस्पायर किया, एक लेडी ने सपोर्ट किया। नाल ही नाल सपोर्ट फैमिली दी पूरी दी हुंदी है, लेकिन कोई ना कोई राय रास्ता दसन वास्ते, गाइड करन वास्ते
1: जी बिल्कुल
0: एक
1: बिल्कुल
0: लेडी।
1: तुसी ठीक आख रहे हो कि तुसी सोचिया कुछ ते पर मेहनत जारी रखी ते अपना फोकस रखिया ते अपने माता पिता दे सपने नूं भी पूरा करन दे विच तुसी पिछे नहीं हटे। तुसी हुणे जिक्र कीता कि तुसी मैरिड हो ते 2 बच्चियां नाल ब्लेस्ड भी हो। जदों मैरिज दी गल आंदी है ते एक औरत वास्ते बड़ा औखा हो जांदा है बैलेंस बनाना, क्योंकि उन्हें दोनों मोर्चियां दे उत्ते बराबर खड़े रहना पैंदा, चाहे वह घर दा मोर्चा होवे ते चाहे वह समाजिक तौर ते बाहर निकल के कुछ करन दा जज्बा होवे, ते वह बैलेंस तुसी किदां बनाया?
0: जिवें कि मैं दस्सिया कि मैं 2 बच्चियां दी माँ हाँ, और यस इतना बहुत डिफिकल्ट होया, लेकिन मैनू किसी ने वड्डे ने समझाया सीगा कि 5 साल गालिए ते एक लाल पालिए। ते मैं उस जॉब नू छड्डन तो बाद एज अ इंजीनियर उस जॉब नू छड्डन तो बाद मैं नौकरी स्किप करती सी, क्योंकि मैं अपने बच्चों नू उन्हां दी ग्रोथ ते फोकस करना सी, ते इसलिए मैं 5-6 साल जॉब नहीं कीती। जिस तरह ही वो किंडरगार्टन स्टेज दे विच आए ते नाल ही मैनू मोटिवेशंस मिलियां, मेरे च वापस एक पॉजिटिव एटीट्यूड आया कि यस नाउ आई कैन डू इट।
1: जी
0: ते मैं भी फिर अपना व्हीकल चुकिया ते अपने रिज्यूमेस दिते और फिर मैं इस लाइफ दे विच एंटर करना शुरू किया दोबारा।
1: बिल्कुल जी, असीं देख पा रहे हां तुहाडी शख्सियत दे विच जिहड़ा जज्बा ते जनून है ना, उहदे उत्ते जिहड़ा तड़का लग रिहा मेहनत दा, उह बड़ा ही खूबसूरत है। ते उहदे करके ही तुसीं अपने जो भी सपने देख रहे हो ते उहनां नूं अग्गे भी वेखदे रहोगे ते उहनां नूं पूरा करन दे विच डटे होए हो। तुसीं हुणे इक जिक्र कीता सीगा कि तुसीं अचीवमेंट्स जिहड़ियां तुसीं उह हासिल कीतियां। जदों असीं जिंदगी दे विच अग्गे वधदे हां ते मुश्किलां भी बहुत आउंदियां ने, मुश्किलां भी आउंदियां ने ते कामयाबियां भी कई चीजों के हासिल करते हैं। पहले तो तुम सांझ पाओ कि मुश्किल आई हैं तुम अपने जेडे कहते ना कामयाबी लैन वास्ते, इस लड़ाई नू अगे वधाउण वास्ते।
0: जिदा कि मैं बीटेक की हुई सी तो मैनू पहली मुश्किल ये आई कि मैं सब्जेक्ट कि चूज करना, मैं की पढ़ाऊंगी। इस चीज़ वास्ते मैं बहुत मुश्किल होया कि किसी वापस स्कूल दे विच आना और अपने सब्जेक्ट्स नू चूज करना कि वो स्कूल वास्ते
1: डिवोशन जिस
0: तरह कि वो सब्जेक्ट क्या उस स्कूल ले इंपॉर्टेंट भी है, क्या उस चीज़ की वैल्यू भी है। फिर मैनू एक गाइडेंस मिली कि मैं जिस तरह कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की हुई सी, तो मेरे को मैथ्स से फिजिक्स के सब्जेक्ट

0: पापा दी उमर पर दी कमाई उना दी सिख्या
1: अते हमेशा साड़ी फिकर करना।
2: वैसे उना दी एक जमा पूंजी बैंक विच भी है,
0: पर क्लेम करना मुश्किल होवेगा।
1: हुण होर भी आसान हो गया है। बैंक दी वेबसाइट जा शाखा ते जाओ, क्लेम फॉर्म भरो, दस्तावेज जमा करो, 15 दिना च रकम प्राप्त करो, अते नॉमिनी नाल क्लेम दा निपटारा होवे होर भी आसान।
3: आरबीआई कहिंदा है,
1: जानकार बनो, सचेत रहो।
4: जिस तरह तुहानू पता ही है कि झोने की जिहड़ी खरीद है वो 1 अक्तूबर

0: सेबी द्वारा इन्वेस्टर जागरूकता पहल और जानकारी ले सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट पे विजिट करो या सेबी साथी ऐप डाउनलोड करो।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵੇੜੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਜਣ ਵਾਲਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आए ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि यह दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत में स्टार्टअप का काफी विस्तार हुआ है।
2: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप में कम से कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है, यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत का आर्थिक विकास एक मजबूत

नींव पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7.8% रही। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और बैंकिंग प्रणाली कई दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है।

0: उन्होंने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
1: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। यह एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डाइवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेनदेन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
0: आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति पर गृहमंत्री ने इस दिशा में सामूहिक संकल्प का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी आतंकी नेटवर्क को पनाह, भर्ती, प्रशिक्षण, धन या पड़ोसी देशों के विरुद्ध गतिविधियां चलाने के लिए क्षेत्र में कोई जगह न मिले। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से दो दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगी। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत में ले लिया है। ये लोग राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया था। पूर्वी दिल्ली में तीन नए प्रदर्शन स्थल रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान सूचित किए गए हैं। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगी। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत भी आज अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 554 अंक बढ़कर 72,479 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 176 अंक की वृद्धि के साथ 22,540 पर पहुंचा। नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये दिन साहस, शांति और दिव्य शक्ति की प्रतीक देवी चंद्रघंटा को समर्पित है। उन्होंने सभी के लिए सुख, समृद्धि और सफलता की कामना की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ तुहानू साडे दिन विच बाकी दे रहिंदे प्रोग्राम ते उहनां दा प्रसारण समां दस दईए। हुण तो थोड़ी देर बाद यानी 1:15 तो लैके 1:40 तक ते फिर 2 बजे तो लैके 2:15 तक तुसी सुनोगे प्रोग्राम फौजी वीरां लई।

ते सर्वन करोगे साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबानी विचार शामी 5:30 बजे। छे बज के 5 मिनट ते प्रोग्रामा दा वेरवा ते उस तो बाद कुछ देश प्यार दे गीत सुनवाए जानगे।

0: मैं ता टीका ला लिया हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
3: लाओ जी आज तो अनु दसंगा वायरल ना होने दे तरीके।
1: ओ लोकी ता वायरल होने दे तरीके दस दे आ ते तू वायरल ना होन दा।
3: सोशल मीडिया ते वायरल होन नालों भी वध जरूरी है जिम्मेदार नागरिक बनना ते उस दे लई जरूरी है ए जानना कि एचआईवी एड्स किवें नहीं फैलदा। एचआईवी एड्स नाल जी रहे व्यक्ति नूं छोण जां हथ मिलाउण नाल संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते उपकरणां या भांडियां दे इस्तेमाल नाल संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते गए गुसलखाने दे इस्तेमाल जां मच्छर दे कट्टण नाल।
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर्स सक्सीड। और इसलिए आज मैं यहाँ जिस विजन के साथ आया हूँ वो है पावर टू एम्पावर।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वव्यापी अनिश्चितता के बावजूद भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींह ते टिकिया होया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्तीय साल की पहली तिमाही में जीडीपी वाधा दर 7.8% रही है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर तो वध है ते बैंकिंग प्रणाली दहाकों में अपनी सब तो मजबूत स्थिति में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रैस तेज रफ्तार नाल अगे वध रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत की तरक्की सारियां दे नाल अगे वधण ते सारियां नूं इकट्ठे लियाउण की कहानी है। उन्होंने कहा कि जदों भी दुनिया नूं एक मजबूत थंब की लोड़ हुंदी है तां भारत अपनी जिम्मेवारी नूं समझते हुए मदद का हथ वधाउंदा है। श्री मोदी ने कहा कि अज भारत में 2000 तो वध ग्लोबल कंपीटेंस सेंटर ने जो दुनिया भर दीआं कंपनियां नूं सेवावां प्रदान करदे ने। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में तकनोलॉजी डाटा ज्ञान और नवीनता शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए ने। उन्होंने कहा कि सरकार का निरंतर यत्न यह यकीनी बनाना है कि भारत की समर्थावां दूजे देशों लई भी मौकों के नवे दरवाजे खोलन। श्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है।
0: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं। करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस है। 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स है। हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले दहाके 25 करोड़ लोगों को गरीबी तो बाहर कढ़िया है। भारत नवी दिल्ली में बहुपक्षी तकनीकी ते आर्थिक सहयोग लई बंगाल की खाड़ी खेत्र के पहलकदमी बिमस्टेक के गृह मंत्रियों की पहली मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह इतिहासक मीटिंग दहशतगर्दी, संगठित अपराधा, नशीले पदार्थों, तस्करी, गैर कानूनी वित्तीय प्रवाह और साइबर खतरों का मुकाबला करने के सांझे संकल्प को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि मैंबर देश आपसी तालमेल राही एक सुरक्षित और मजबूत बिमस्टेक खेत्र बनाने लई वचनबद्ध ने। इस मौके बोलदे गृह मंत्री ने कहा कि बिमस्टेक खेत्री एकता आर्थिक सहयोग और समूहक सुरक्षा लिए एक महत्वपूर्ण मंच वजो उभरिया है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा शांति और मनुखी भलाई लिए वचनबद्ध रहा है जो वसुदैव कुटुंबकम के मंत्र से आधारित है। श्री शाह ने कहा कि भारत सारे देशों की प्रभुसत्ता और खेतरी अखंडता का सत्कार करता है और विवादों के शांतिपूर्ण हल का समर्थन करता है। दहशतगर्दी प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहरांदिया गृहमंत्री ने कहा कि इस दिशा में समूहक संकल्प का सद्दा दिता जाना चाहिए।
2: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। ये एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डायवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेनदेन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
1: खुफिया ते कानून लागू करने वाली एजेंसियां वित्तीय निगरानी ते सरहदी प्रबंधन विचकार मजबूत सहयोग ते तालमेल दी लोड़ ते जोर दिता। एक खबर तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्सहैंडल है @AIRRNU जलंधर। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा फंड IMF ने मौजूदा ते अगले वित्तीय साल लई भारत दी GDP विकास दर दा अनुमान वधा के 7% कर दिता है। बैंकॉक में IMF की अंतरराष्ट्रीय मुद्रा फंड की सालाना मीटिंग में अक्तूबर 2026 लिए विश्व आर्थिक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण सोध की गई है। IMF ने जुलाई में विकास दर के अनुमान मौजूदा वित्तीय साल 6.4% और आने वाले वित्तीय साल 6.7% रहने की पेशीनगोई की सी। बहुत ही अस्थिर विश्व आर्थिक हालात के बावजूद कई ढांचागत ताकत भारत की आर्थिकता मजबूती दे रही ने। इन्हों मजबूत घरेलू मंग, सेवावान की मजबूत गतिविधि, ढांचागत सुधार से जनसंख्यकी शामिल ने। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस जनता पार्टी CJP के आगुआ सौरभ दास से आशुतोष रंका हिरासत में ले लिया है। ये राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंत्र में दाखिल होने की कोशिश कर रहे सन। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंत्र निर्धारित विरोध प्रदर्शन स्थानों की सूची चो हटा दिता सी। 3 नवे विरोध प्रदर्शन स्थान रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड

0: एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलना, यह अपने आप में एक बड़ी क्षमता है। लेकिन जब यह अवसर समाज के अधिक से अधिक लोगों को मिलता है तो शक्ति का संतुलन बनता है और इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भारत की स्टार्टअप जर्नी इसी बदलाव का उदाहरण है।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत की यह मुसलसल कोशिश है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि भारत की सलाहियतें दीगर मुल्कों के लिए भी मौके के नए दरवाजे खोलें। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि भारत ने पिछली दहाई में 25 करोड़ लोगों को गरीबी के सतह से बाहर निकाला है।
0: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो। और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: भारत आज नई दिल्ली में कसीर रुखी तकनीकी और इक्तिसादी ताउन के प्लेटफॉर्म यानी बिम्स्टेक के वज़राए दाखला की पहली मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। ये तारीखी मीटिंग दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम, नारकोटिक्स, इंतहा पसंदी, गैर कानूनी तिजारत और साइबर खतरात से निमटने के तय मुश्तरक अज़्म की अलामत है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दाखला अमित शाह ने कहा कि इलाकाई सालमियत, इक्तिसादी ताउन और मजमूई सलामती के लिए बिम्स्टेक एक अहम प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम के उसूल के तहत हमेशा अमन और इंसानी फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म रहा है। भारत की दहशतगर्दी को हरगिज़ बर्दाश्त न करने की पॉलिसी की तौसीक करते हुए वज़ीर दाखला ने इज्तिमाई अज़्म के लिए कहा, जिससे इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि खित्ते में पनाह, भर्ती करने, तरबियत देने, फंडिंग करने और पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ सरगर्मियों की खातिर दहशतगर्द अपने नेटवर्क के लिए जगह हासिल न कर सकें।
2: आतंकवादियों, उनके सहायकों, आपराधिक नेटवर्क, वित्तीय चैनल और सीमा पार गतिविधियों पर सत्यापित तथा कार्रवाई योग्य सूचना का समय पर आदान प्रदान हमारी सामूहिक सुरक्षा को मजबूत कर सकता है।
1: दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर बात करते हुए वजीर मौसूफ ने नोडल एजेंसियों के जरिए इंटेलिजेंस के तबादले और दहशतगर्दी को फंडिंग करने और मुनज्जम जराइम के खिलाफ बेहतर ताउन की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने सभी बिम्स्टेक मेंबर मुल्कों से ताउन को मजबूत करने को कहा ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई भी मुजरिम या दहशतगर्द कानून की गिरफ्त से बाहर न रह सके, भले ही वो कहीं भी छुपा हुआ हो। बिम्स्टेक एक इलाकाई तंजीम है जिसका कयाम साल 1997 में अमल में आया था। खलीज बंगाल के अतराफ के मुल्कों और इसके पड़ोसी मुल्कों के दरमियान तकनीकी और इकतसादी ताउन को फरोग देना इसका मकसद है। बिम्स्टेक में 7 मेंबर ममालिक शामिल हैं, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड हैं। बैनुल अक्वामी मालियाती फंड IMF ने साल 2026-27 के लिए भारत की मजमूई घरेलू पैदावार GDP की शरह नमू के तखमीने को 6.4 से बढ़ाकर 7% कर दिया है। IMF ने अपनी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कहा कि तखमीने में यह तजिया तवक्को से ज्यादा नमू की बुनियाद पर किया गया है। उसने कहा कि भारत तरक्की के तजज़ियों की बुनियाद पर मुमताज मुल्क बनकर उभर रहा है, जिससे मुस्तहकम और ताकतवर तरक्की की निशानदेही होती है। वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK मिश्रा ने आज कहा कि शवाहिद पर मबनी पॉलिसी बनाने और खासतौर से मसनूई जहानत के दौर में डेटा को जमा करना और इसका तजज़िया करना बहुत जरूरी है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आदाद और शुमार की वजारत और प्रोग्राम के निफाज से मुतालिक कॉन्क्लेव में खिताब करते हुए जनाब मिश्रा ने यह बात कही। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अज़्म के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। आज अपनी खसूसी सीरीज के तहत हम इस बात का तज़किरा कर रहे हैं कि भारत के शुमाल मशरिकी खित्ते में इस नज़रिए से किस तरह अमन इस्तेहकाम और तरक्की को अमली शक्ल दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मरकजी हुकूमत ने साल 2014 से अपनी मशरिक नवाज पॉलिसी के तहत शिमाल मशरिकी खित्ते को स्ट्रेटजिक गेटवे के तौर पर पोजीशन दी है। वजारत दाखिला के मुताबिक खित्ते में शोरश पसंदी से मुतालिक वाकयात में 70% से ज्यादा की कमी आई है। सलामती की सूरत हाल में यह बेहतरी मुसल्ह ग्रुपों के साथ 12 से ज्यादा अमन समझौतों का नतीजा है। इन

रोमांस इस फिल्म का गीत तुसी सुन रहे सी लता मंगेशकर ते अमित कुमार दी आवाज़ विच। आओ सुनते हैं प्रोग्राम दा अगला गीत लव फिल्म चलिया गया। आवाज़ा SP बाला सुब्रमण्यम ते चित्रा दिया।

0: ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू। आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन के भारत दौरे पर और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए नए अवसर खोले हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है।
1: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं। करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं। 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं। हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका हुआ है।
1: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
0: श्री मोदी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7.8

0: प्रतिशत रही। उन्होंने कहा कि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और बैंकिंग प्रणाली कई दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो। और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत के नवाचारों का काफी विस्तार हुआ है।
1: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई। करीब आधे स्टार्टअप 5% से अधिक स्टार्टअप में कम से कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है, यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के, कृपया इसे फिर से सुन ले, भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया।
2: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। ये एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डायवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेनदेन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी की समस्या मानवाधिकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
2: मानव तस्करी भी हमारे साझा सुरक्षा और मानव अधिकारों के समक्ष गंभीर चुनौती है। पीड़ितों की पहचान, बचाव, सहायता, पुनर्वसन और सुरक्षित वापसी में सहयोग हमारे सामूहिक प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहना चाहिए।
0: श्री शाह ने खुफिया जानकारी, कानून प्रवर्तन, वित्तीय निगरानी और सीमा प्रबंधन एजेंसियों के बीच त्वरित सहयोग और समन्वय की जरूरत पर बल दिया। श्री शाह ने आतंकवादियों को मिलने वाले धन और संगठित अपराध से निपटने में मनोनीत नोडल एजेंसियों के जरिए खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और बेहतर समन्वय पर भी बल दिया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रूपये से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए आज यह निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 6.4% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। आईएमएफ की प्रमुख विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अनुमानों में ये सुधार सुदृढ़ घरेलू मांग और मजबूत सेवा गतिविधियों के कारण आर्थिक वृद्धि को मिली अपेक्षा से अधिक गति के कारण किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2027 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई मुक्त व्यापार समझौतों से वैश्विक आर्थिक गतिविधि को बल मिलेगा और आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ होगी। भारत के कोस्टारिका के सैन

0: उसमें स्थित नए रेजिडेंट मिशन ने कार्य करना शुरू कर दिया है। ये मध्य अमेरिका में अपने राजनयिक दायरे को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि मिशन भारत और कोस्टारिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मिशन आपसी राजनीतिक जुड़ाव को सुगम बनाएगा, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करेगा। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से दो दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगी। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कोटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री तथा उद्योग और व्यापार मंत्री कारिल हावलेचक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति का और विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए आंकड़े एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
1: नई दिल्ली में भारत मंडपम में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एक सम्मेलन में श्री मिश्रा ने कहा कि आंकड़े भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया ताकि आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया में एक रूपता लाई जा सके और समान परिभाषाओं तथा मानकों को अपनाया जा सके। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय आंकड़े इसीलिए भी आवश्यक हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण की प्रगति को मापा जा सके और एक समृद्ध, समावेशी, नवोन्मेषी और सतत राष्ट्र बनने की दिशा में देश की प्रगति का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम बता रहे हैं कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास को कैसे स्थापित किया गया है।
2: 2014 से केंद्र सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर भारत को एक नए राजनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित किया है। गृह मंत्रालय के अनुसार क्षेत्र में उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं में 70% से अधिक की भारी कमी आई है। सुरक्षा के माहौल में ये बड़ा सुधार बोडो, कार्बी और उल्फा गुटों सहित सशस्त्र समूहों के साथ हुए एक दर्जन से अधिक ऐतिहासिक शांति समझौतों का परिणाम है, जिसके चलते 10,000 से अधिक उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को कई क्षेत्रों से हटाया गया है। इस सुरक्षित माहौल का लाभ उठाते हुए केंद्र सरकार ने क्षेत्र में रिकॉर्ड निवेश किया है। पीएम दिवाइन जैसे समर्पित योजनाओं के माध्यम से 8 राज्यों में बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है, जिसमें हर मौसम के अनुकूल राजमार्गों, नए रेलवे नेटवर्क और हवाई अड्डे तक शामिल है। 2023 में अपने असम दौरे के दौरान श्री मोदी ने कहा था कि पूर्वोत्तर भारत देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में से एक बनने की राह पर है।
3: असम में नॉर्थ ईस्ट में सरकार और समाज के सामूहिक प्रयासों से जैसे जैसे शांति लौट रही है, वैसे वैसे पुराने नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। लंबे समय तक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आपसा नॉर्थ ईस्ट के अनेक राज्यों में रहा है, लेकिन बीते 8 सालों के दौरान स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था लागू होने के कारण हमें आपसा को नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों से हटा दिया है। बीते 8 सालों के दौरान नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की घटना में करीब 75% की कमी आई
2: है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार का यह समग्र दृष्टिकोण पूर्वोत्तर भारत को एक सीमांत इलाके से राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक विकास इंजन में तेजी से बदल रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली में 5 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने दिल्ली में वायु प्रदूषण

0: प्रदूषण से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को महिला एशिया कप और एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन और महत्वपूर्ण मैचों में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल को वेस्टइंडीज के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए रिकॉर्ड पांचवीं बार आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। डेनमार्क बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से ओडेंस में शुरू हो गया है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु पहले दौर के मुकाबले में जर्मनी की यवोन ली से मुकाबला करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और के श्रीकांत भी आज अपने अपने पहले दौर के मुकाबले खेलेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 598 अंक बढ़कर 72,523 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 189 अंक की बढ़त के साथ 22,552 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रूपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू। आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडी वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेशे प्रोग्राम रंगली धरती। अज इस प्रोग्राम च देवराज दे साथियों को माता दी पेटा सुनवाईया जानगियां। आओ सुनदे हां इन्हां दी आवाज विच पेट।

नमस्कार, तुहाडा मनपसंद प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां लेके मैं तुहाडा दोस्त ते आरजे तजिंदर सिंह एक बार फिर हाजिर हाँ। इस प्रोग्राम च असी तुहाडे वल्लों भेजिया जांदियां प्यार भरियां चिट्ठियां नूं शामिल करते हुए तुहाडे वल्लों कीती जांदी पंजाबी गीतां दी फरमाइश नूं पूरा करते हाँ। दोस्तों, जेकर 13 अक्तूबर भाव अज दे दिन की गल करिए तां इह दिन खुशी ते गमी दोवां नाल संबंधित है। जेकर खुशी की गल करिए 13 अक्तूबर 1911 नूं प्रसिद्ध अदाकार ते प्लेबैक सिंगर अशोक कुमार का जन्मदिन होया सी। जेकर गमी की गल करिए 13 अक्तूबर 1987 नूं प्रसिद्ध अदाकार निर्देशक ते प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार का देहांत हो गया सी। इह दोवें सगे भरा सन। किशोर कुमार का मूल नाम आभास कुमार गांगुली और अशोक कुमार का मूल नाम कुमुद लाल गांगुली सी। दोवां भरावां ने फिल्मां च अदाकारी ते गायकी दा लोहा मनवाया ते अमिट यादां छड्डियां। दोस्तों, इह गल्लां प्रोग्राम दे नाल नाल चलदियां रहणगियां। प्रोग्राम दी पहली फरमाइश लई सानूं चिट्ठियां

अनमोल, धर्मपाल वीर सिंह लाठी, विवान लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर ते रमेश मिगलानी, बाघा पुराणा तो सतनाम सिंह रखड़ा, अमरजीत सिंह, अमरजीत कौर रखड़ा, तेग फतेह सिंह ते जसगुण रखड़ा, पंचकुला सैक्टर 9 तो आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान ते होर उन्हां दे परिवारक मैंबर। दोस्तों, इन्हां सारयां दी फरमाइश ते सुणदे आं प्रोग्राम दा अगला गीत।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली विच ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम नो संबोधन किया। उन्होंने कहा कि सरकार अपने शासन दृष्टिकोण विच शक्ति तो शक्तिकरण के सिद्धांत नू अपनाया है। गृहमंत्री अमित शाह ने दहशतगर्दी प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस नीति नू दोहराया। इस मुकाबले ले समूहिक संकल्प का सद्दा दिता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा फंड IMF ने मौजूदा ते अगले वित्तीय साल लई भारत दी GDP विकास दर दा अनुमान वधा के 7% कर दिता है। कैनेडा ते विदेश मंत्री अनीत आनंद आज तो भारत दे 2 दिना दौरे ते रहनगे। पंजाब दे मानसा विच आज नशा विरोधी कारकुन पतविंदर सिंह चोटा दी गोली मार के हत्या कर दिती गई है। जलंधर डिवीजन के पेंडू खेतरां विच डाक विभाग दीआं वख-वख योजनावां ते सेवावां बारे जागरूकता वधाउण दे उद्देश नाल पंजाब डाक सर्कल वल्लों मोबाइल थिएटर वैन मुहिम शुरू कीती गई है। सूबे दे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने दस्सिया कि पंजाब सरकार वल्लों वित्तीय साल दौरान पछड़ियां श्रेणियां ते 147 लाभपात्रियां नूं स्वे रोजगार स्थापित करने लई 4,82,00,000 रुपए दे कर्जे मुहैया करवाए गए ने। विजिलेंस ब्यूरो ने सितंबर महीने विच 6 केसां विच 6 सरकारी अधिकारियां समेत 8 व्यक्तियों नूं रिश्वत लैंदिआं रंगे हत्थी काबू कीता। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों दौरान पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ ते दिल्ली विच गरज चमक नाल तेज हवावां चलन दी संभावना जताई है। ए सन हुण तक दे मुख समाचार। असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। शाम दे 4:02 बज रहे ने। आओ हुण तुहानूं जी खेड जगत दीआं जानकारियां ते भरपूर प्रोग्राम सुनांदियां खेड संसार।
1: खेड संसार। खेड संसार प्रोग्राम सुनन वालियां नूं वीरेंद्र दा नमस्कार। खेडां सानूं जीउणा सिखाउंदियां ने। मुकाबले तो पहला जदों खिडारी अभ्यास करता है तो वह सारियां नूं इह सुनेहा दिंदा है कि जिंदगी दे इम्तिहान नूं पास करन लई भी बहुत जबरदस्त तैयारी की जरूरत हुंदी है। खेड मुकाबलियां च जदों असीं कांटे की टक्कर वेखदे हां तो यह मुकाबले सानूं इस गल दा सुनेहा दिंदे ने कि मुश्किलां आउण ते इंसान नूं शरीरिक ते मानसिक समर्था पूरी तरह ला देनी चाहीदी है। कुछ भी बचा के नहीं रखना चाहिए। ते मुकाबले तो बाद जदों जित हुंदी है ते खिडारी जित दा जशन मनाउंदा है।

0: की खिडारी दलजीत सिंह ढिल्लोंहरा नूं मिली। दलजीत सिंह ढिल्लोंहरा बारे तुहानूं दस दईए कि हॉकी दी दुनिया विच उहनां दा नाम बहुत अदब बहुत इज्जत नाल लिया जांदा है। दलजीत सिंह ढिल्लों बलजीत सिंह ढिल्लों दे छोटे भरा ने। बलजीत सिंह ढिल्लों जो बहुत साल भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी भी कर चुके ने। दलजीत सिंह ढिल्लों जदों मैदान ते इनसाइड फॉरवर्ड दी पोजीशन ते खेडदे सी बहुत वार विरोधी टीम दी डी च जा वड़दे ते गोल ताक दिंदे। हॉकी दी दुनिया विच वो अपनी तेज रफ्तार ड्रिबलिंग ते गेंद दे शानदार कंट्रोल लई जाने जांदे रहे ने। इसे करके वो 100 तो वध अंतरराष्ट्रीय मैच खेड सके। उन्होंने साल 2002 विच कुआलालंपुर मलेशिया विखे हुए पुरश हॉकी विश्व कप विच भारत वल्लों शानदार प्रदर्शन किया सी। उन्हां दी जुबानी ही जानदे आ उन्हां दे जीवन उन्हां दे करियर ते उन्हां दी कोचिंग बारे।
1: थैंक यू सत श्री अकाल सारिआं नूं जी। मेरा डेब्यू जिहड़ा होया सीगा उह होया सीगा कॉमनवेल्थ गेम तों। हाँ, उस कॉमनवेल्थ गेम तो बाद फिर एक सीरीज़ हुई सी इंडियन पाकिस्तान सीरीज़। तो वह सीरीज़ मेरे हिसाब न होनी चाहिए हूँ दोबारा फिर होनी चाहिए है, क्योंकि इन्ना क्रेज़ लोगों का इन्ना शौक लोगों हॉकी का इन्ने स्टेडियम फुल स्टेडियम होंगे सी और खेडण का इन्ना मजा आता है कि क्या ही बात है।
0: जी दलजीत ढिल्लों जी, जिन्हें समयों तुसीं भारतीय टीम की प्रतिनिधता की है उदों भारतीय हॉकी टीम की भी क्या ही बात होंगी सी। तुहाडे वड्डे भाई बलजीत सिंह ढिल्लों फिर भास्कर पिल्ले ते होर बहुत सारे दिग्गज खिडारी होंदे सी। उदों पंजाब दी टीम भी बहुत मजबूत हुंदी सी। पंजाब दी टीम चाउणा भारत दी टीम चाउणा ये बड़ा औखा सी। सो तुहाडा रस्ता किद्दां पद्धरा होया सी, तुसीं भारत दी टीम च किद्दां आए सी?
1: मेरा स्कूल दुआबा स्कूले पढ़िया, मैं दुआबा खालसा स्कूल मॉडल स्कूल पढ़िया लाडोवाली रोड। उत्थें मेरे ब्रदर पहला खेडदे सी स्कूल च, तो मैं वैसे ही ग्राउंड च टाई टूई लाई अपनी ड्रैस पाई तो मैं उत्थे ग्राउंड च बैठा सीगा। तो कलोनी च खेडदे सीगे राजवीर कौर जिहड़े गोल्डन गर्ल ने अपने, वो साढ़े लागे रेंदे सी, तो उन्होंने देख के माड़ी मोटी ही कलोनी झाकी खेडी दी सी। तो जिहड़े बच्चे उत्थे खेड रहे सीगे मेरे नाल दे सीगे सारे, वो दर्शन कौर भट्टी मैडम सीगे, बहुत तगड़े प्लेयर सी अपने टाइम दे, वो कोचिंग करदे सी उत्थे। तो नाल दे मुंडिया ने कहता जी ये दली बहुत वधिया खेडदा जी हाकी। तो वो मैडम मेरे को आए, उन्होंने मेरी टाई टूई लाई तो मैनू कहिंदे चल चक्कर ला। बस वो ऐसा चक्करी चढ़ाया जी, बस फिर हॉकी के दुआले ही हो गए जी। फिर सारा कुछ भुल गए, पढ़ाई भुल गए, सारा कुछ घर के फंक्शन भुल गए, सारा कुछ भुल गए, फिर हॉकी के दुआले हो गए जी बस।
0: जी बहुत वधिया गल है दलजीत सिंह जी कि तुसीं हॉकी के दुआले होए तो भारतीय हॉकी नूं इन्ना वधिया फॉरवर्ड मिलिया। पर यह भी गल नाल है जी कि जदों बंदा शौक के तौर पर हॉकी खेडता है तो उदों उहदा मजा लैंदा, पर जदों प्रोफेशनल कोई खेड शुरू कर लैंदा है ना उहदे च फिर दबाव भी हुंदे ने, प्रैशर भी हुंदे ने, तुहाडे च इह भी हुंदा है कि तुसीं परफॉर्म करना। सो उहदे लई परफेक्शन लई तुसीं किन्नी क मेहनत कीती, किन्ना क अभ्यास कीता?
1: मैं जिवें दस्सिया दर्शन कौर भट्टी मैडम सी, उन्होंने सानूं स्किल वर्क बहुत कराया क्योंकि आप बहुत स्किली सीगे उह। फिर उस तो बाद मैं स्पोर्ट्स स्कूल चला गया जिथे साढ़े गुरदीप सिंह मान कोच सीगे, जिन्हां दे हत्थों बड़े बड़े ओलंपियन निकले ने। तो मैनू भी उन्होंने तराशिया, मेरी उन्होंने मेरे वाल देख के कहा भी तू इंडिया खेडेगा तू आह चीज़ा कराया कर। फिर उन्होंने मेरी स्टिक वर्क से बहुत काम किया। तो मैं उन्होंने कई बार कहा भी तू जे तू सेंटरफोर्ड खेडता रहेगा तो तू इंडिया का कि वर्ल्ड का टॉप का सेंटरफोर्ड खेडेगा। पर मैं उत्थे थोड़ी जी निगैली कर गया कि मैं अपनी साइड बाद आकर लैफ्ट इन लैफ्ट आउट खेडना पै ज़्यादा। तो मैं अजे भी उस गल का गुणा कि जे मैं वो कोच अपने गल मनी होंगी तो हो सकता मैं वर्ल्ड का टॉप का सेंटर फॉरवर्ड हों।
0: दलजीत ढिल्लों जी, साल 2002 जिहड़ा विश्व कप होया सी उहदे च तुसीं भारत की प्रतिनिधता की, तुहाडा प्रदर्शन बहुत वधिया सी, चार गोल भी उहदे च कीते सी, वह कुछ तजर्बे साडे नाल सांझे करने चाहोगे अपनियां परफॉर्मेंसेस?
1: हाँ जी, जिहड़ा 2002 दा वर्ल्ड कप सीगा उह सैडरिक सी उस टाइम कोच साडे, और सैडरिक बारे तो तुहानूं पता ही है सारिआं नूं कि उह बड़े मेहनती और बड़े डेडिकेटड जनूनी बंदा सी उह हॉकी दे लई ने। उसने तैयारी सानूं इन्नी वधिया कराई, इन्नी ज़्यादा फिटनेस कराई और मेरे बहुत कम आई फिटनेस। तो मैं उस वर्ल्ड कप विच मैं अपने आप में मैनू लगता कि मैं अपनी जिनी भी हॉकी खेडिया वा मेरी सब तो बेस्ट परफॉर्मेंस जी सी वह एशियन गेम 2002 एशियन गेम तो 2002 वर्ल्ड कप च रही सी, क्योंकि उत्थे मैं इंडिया का जिहड़ा बेस्ट स्कोरर भी सीगा, चार गोल मेरे सीगे एशियन गेम च, भी मेरे चार गोल सीगे, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस सी मेरा।
0: उस वर्ल्ड कप च नीदरलैंड जर्मन इदा दियां टीमां, वर्ल्ड कप च आम तौर पर इदा दियां टीमां दे नाल मुकाबला हुंदा, उन्हां दे नाल खेडना वो एज एन ओपोनेंट, वो टीमां तुहानूं किदां दियां लगदियां?
1: हाँ जी, वो टीमां उस टाइम हॉलैंड ऑस्ट्रेलिया जर्मनी ये बड़ियां कहंदियां कौंदियां टीमां हुंदियां सी, ते वो टीमां नाल खेड के सानूं जिहड़ा एक्सपीरियंस मिलदा सीगा वो अलग ही एक्सपीरियंस सीगा कि सानूं अगे वाली हॉकी जिद्दां असीं उदों नवें नवें सीगे विच वह सानू एक्सपीरियंस मिले। फिर सानू जिहड़ियां उस तो बाद टूर्नामेंट खेडे सी इंडिया वालों वो सानू होर ईजी लगन लग पे, तो सानू इन्ना एक्सपीरियंस मिले, सानू खेडन दा तरीके नवें पता लगे, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ

प्रिय की प्रीत प्यारी मगन मने मैं चितवासा नैनो तार तुहारी ए इलाही फरमान प्रभु प्यारियां दी प्रभु नाल प्रीत दा वर्णन करता है। मन दी ऐसी अवस्था उना वडभागी प्राणियां दी हुंदी है जिन्हां दा चित प्रभु दे चरणां विच लग्या हुंदा है, क्योंकि उना नूं ए दृढ़ भरोसा हुंदा है कि अकाल पुरख प्रभु आद तो ही जीवां दा मददगार रहा है। जीव दे जन्म तो पहला, उस दे जन्म तो बाद, उस दे अंत तक, इतों तक कि प्रलोक विच भी उसका सहाई हुंदा है। ऐसा तनासरी राग विच साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी फरमाउंदे ने कि ऐसे प्रभु नाल मेरा चित जुड़ गया है। प्रभ स्यों लाग रहे हो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाई, तन हमारा मीत। इस शब्द का गायन कीता है भाई हरचंद सिंह रागी ते उन्हां दे जत्थे ने।

प्रभ से लाग रहे हो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाई, तन हमारा मीत। इस शब्द दा गायन कीता सी भाई हरचंद सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। उस प्रभु ते अटल भरोसा रखण वाले प्राणी गुरमुख जन जीव रूप इस्त्रियां अपने चित नूं उस अकाल पुरख प्रभु नाल जोड़ लैंदियां हन, क्योंकि उना दे मन अंतर दी वेदना नूं अकाल पुरख प्रभु ही समझ सकता है। इस करके वो चिंता मुक्त हुंदियां ने। मन बेध्या दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई। इस शब्द दा गायन कीता है भाई अमरीक सिंह जख्मी रागी ते उना दे जत्थे ने।

0: मन बेध्या दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई। इस शब्द दा गायन कीता सी भाई अमरीक सिंह जख्मी रागी ते उना दे जत्थे ने। सरवण करदे हां इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी सिवतार सिंह।
1: यह पावन शब्द श्री गुरु नानक देव जी द्वारा उच्चारण कीता होया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 795 उपरो सुभाई मान है। इस पावन शब्द अंदर गुरु साहिब बख्शिश करदे हन कि इस संसार अंदर हर जीव दी वेदना ओह परिपूर्ण परमात्मा ही समझ सकता है। होर किसी अंदर ताकत नहीं कि ओह किसी दा दर्द हर सके। विचार गोचरे शब्द दियां रुहाओ वालियां पंक्तियां जो कि शब्द

प्रभु ना लग गया है। अकाल पुरख प्रभु ने ऐसी कृपा की है कि मैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि ते जित प्राप्त कर ली है। पंजे दूत वस विच आ गए ने। पाव खंडन दुख पंजन स्वामी भगत वच्छल निरंकारे कोट प्राद मिटे खिन पीतर जा गुरमुख नाम समारे। इस शब्द का गायन कीता है भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

पावखंडन दुख पंजन स्वामी भगत वच्छल निरंकारे कोट प्राद मिटे खिन पीतर जा गुरमुख नाम समारे। इस शब्द का गायन कीता सी भाई बख्शीश सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने।

0: गुरबाणी विचार इस प्रोग्राम दे प्रायोजक सन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज फाजिलका, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज कसौली, डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा का यह जलंधर केंद्र है। इस वेले शाम के 6 बजन वाले ने हुण तो कुछ ही पलों के इंतजार तो बाद तुसी सुनोगे हिंदी समाचार साढ़े दिल्ली केंद्र तों।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक

0: विकास मजबूत नींव पर टिका है।
1: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
0: भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध धन प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावलीचेक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इंकार इस स्थापित तथ्य को नहीं बदल सकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर आज कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि एक विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों का सेवन देश के युवाओं की क्षमता में बाधा डाल सकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन उसे अपने कार्यकाल के दौरान आयोग की कार्यप्रणाली दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो NDA की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देश हित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ कभी भी देने का प्रयास नहीं किया।
0: शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रांची में एक छात्र की दुर्भाग्यपूर्ण मौत की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच करेगी और संस्थान में दिशा निर्देशों के पालन का आकलन करेगी। आयुष मंत्रालय ने त्वचा संबंधी बीमारियों के उपचार और प्रबंधन के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी के साथ योग को शामिल करते हुए मानक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य आयुष की विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में उपचार की प्रक्रिया को अधिक एकरूप बनाना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना और वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित चिकित्सा को बढ़ावा देना है। UPI पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बताया कि UPI और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। ओडेंस में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन के पहले दिन किदाम्बी श्रीकांत ने फ्रांस के अर्नोट मर्कले को हराकर पुरुष सिंगल्स के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने जापान की नातुस की निदेरा को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज से असि आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले शाम दे 6:05 होए ने। आहुन जान दे हैं अज रात तक दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उन्हां दा प्रसारण समां। शाम 6:30 खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय वल्लों स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम पेश कीता जाएगा किसान वाणी।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: शुरू करिए इन्वेस्टमेंट दा सबक।

0: जागरूकता पहल हो जानकारी ले सभी इन्वेस्टर वेबसाइट पे विजिट करो या सभी साथी ऐप डाउनलोड करो।
1: आकाशवाणी जलंधर ते पेश है एक और देशभक्ति समूह गाना।

0: जागरूकता पहल। और जानकारी ले सभी इन्वेस्टर वेबसाइट पे विजिट करो या सभी साथी ऐप डाउनलोड करो।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी ए हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। पंजाब विच नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह चोटा दे कतल दी भाजपा समेत वख-वख सियासी पार्टियां वल्लों सख्त नखेधी, सीबीआई जांच दी मंग। पंजाब विच एसआईआर मुकम्मल, वोटरां दी कुल गिणती 2.1 करोड़ तों वध, रहिंदे लोकां लई जल्द ही लाए जाणगे विशेष कैंप। पंजाब दे खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां वल्लों एसएएस नगर विखे आधुनिक बायो फर्टिलाइजर टेस्टिंग लैबोरेटरी दा उद्घाटन। 2000 रुपए तो वध दे गाहक तो व्यापारी लैण देण लई यूपीआई व्यापारी छोट दर एमडीआर दिवाली तो बाद कीती जाएगी लागू। व्यक्ति तो व्यक्ति सारे यूपीआई लैण देण रहणगे मुफ्त। ते मौसम विभाग वल्लों पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच अगले 2 दिनां लई कई थावां ते गड़ेमारी ते बारिश दा ऑरेंज अलर्ट जारी। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਟਾ ਦੀ ਇਕ ਕੈਮਿਸਟ ਨੇ

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਬੀ ਪਰਾਗ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7:10 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨ ਸੇਵਾ ਸੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ।
1: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 27वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा समुद्र बंदरगाह और नई आर्थिक शक्ति। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक कोमोडोर केडी जोशी और रणनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: जनसेवा से देश सेवा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 वर्ष पूरे किए हैं सार्वजनिक सेवा के, 13 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और 12 वर्ष से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, बंदरगाह समुद्र और नई आर्थिक शक्ति। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत का जो समुद्र तट है वो बहुत लंबा है, 11,099 किलोमीटर के करीब का, और जो इनलैंड वाटरवेज हैं उनकी भी लंबाई 14,500 किलोमीटर के करीब है। और 95% भारत का जो ट्रेड बाय वॉल्यूम और लगभग 70% बाय वैल्यू मैरिटाइम रूट से आवाजाही उसकी होती है। तो इसलिए बहुत ही एक ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इस पर हम एक्सपर्ट ओपिनियन आज लेंगे, बारीकी से चर्चा करेंगे। तो हमारे विशेषज्ञ हैं हमारे साथ जुड़े हुए इस कार्यक्रम में, कॉमोडोर केडी जोशी जो है डिफेंस एनालिस्ट और प्रोफेसर राहुल मिश्रा जो है स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद।
2: कॉमोडोर जोशी, बंदरगाहों का जो विकास गुजरात में हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, सबसे लंबी कोस्ट लाइन है भारत में वो गुजरात में ही है, 2340 किलोमीटर। सो जिस तरह से वहां की सरकार ने ये रियलाइज किया कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है और प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ उन्होंने वहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग की है, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या ये मॉडल पूरे भारत में पूरी जो कोस्ट लाइन है वहां पर भी सफल रहा है?
4: आप बिल्कुल सही बोल रही हैं कि जो प्राइवेट पार्टनरशिप है वही एक फ्यूचरिस्टिक, मैं कहना चाहूंगा कि आगे की सोच का कदम माना जाएगा, क्योंकि जब तक देश के सारे विभिन्न तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह लीजिए, इंडस्ट्रियल हाउसेस कह लीजिए, सरकार कह लीजिए, ये सारे एक साथ अगर आएंगे और पूरे देश का चौतरफा उन्नति की दिशा में अपना अनुदान देंगे, तभी देश में मेरे ख्याल से एक उन्नति ठीक से हो पाएगी। और अगर आप देखें तो सरकार ने जो दो चार

0: साल पहले मेरे ख्याल से 2020 के आसपास एक फाइनेंशियल शिप बिल्डिंग के लिए एक फाइनेंशियल व्हीकल लॉन्च किया था, तो वो भी सरकार की तरफ से एक कदम है कि ईज ऑफ बिजनेस जिसे बोलते हैं, कि अगर आपको किसी को शिप बिल्डिंग में जाना है, किसी को मैरिटाइम रिलेटेड किसी भी इंडस्ट्री में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो ये एक कॉरपोरेशन है जिससे आप जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनको सरकार की तरफ से भी मदद मिलेगी।
1: जी, सो प्रोफेसर मिश्रा, जैसे कॉमोडोर जोशी ने बताया कि पूरी तरह से सरकार ने एक बढ़ावा दिया है निजी क्षेत्र को पोर्ट्स के जो सेक्टर है उसमें उतरने के लिए, हमारे यहाँ 13 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 से भी अतिरिक्त पोर्ट्स हैं। आप हमें बताएं कि ये जो एक बल दिया गया है बंदरगाहों के विकास पर, समुद्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर, कैसे देखते हैं आप इसको, कितना इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, हमारे आर्थिक सशक्तिकरण के लिए?
2: भारत में आर्थिक विकास की जो गति है और आर्थिक हमारी जो हर साल की जो सालाना हमारी आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति की जो परसेंटेज है, वो कंसिस्टेंटली एक हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। भारत सरकार ने पिछले दो दशकों में, खासतौर से पिछले 12 सालों में, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर के, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे कमोडोर जोशी ने कहा, इन तमाम क्षेत्रों में सरकार ने अपनी नीतियों को बहुत स्पष्ट तौर पर सामने रखा है कि सरकार का रोल एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का है। एक ऐसा एनवायरनमेंट तमाम जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनके लिए और आम इंसान के लिए भी, ऐसा एनवायरनमेंट सामने रखना जिसमें कि वो अपनी जो उनकी क्षमताएं उनका विकास कर सकें। तो सरकार का काम एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, जिसमें मुझे लगता है कि सरकार ने पूरी तरह से अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित किया है। इस इनेबलिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि देखिए व्यापार के लिए किसी भी देश की या राज्य की सरकार व्यापार में सीधे तौर पर नहीं उतरती है, अगर वो एक कम्युनिस्ट सरकार ना हो तो, ऐसा जो वातावरण बनता है उसमें प्राइवेट सेक्टर को सीधे तौर पर एक स्टेक होल्डर के तौर पर उतरना पड़ेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि जैसे भारत की आर्थिक प्रगति हो रही है और भारत से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस उभर रही हैं और उनका व्यापार बढ़ रहा है दुनिया के तमाम कोनों से, उसको ध्यान में रखते हुए प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप बहुत आवश्यक थी। और भारत के, जैसा आपने कहा कि भारत के बड़े जो बंदरगाह हैं, 13 बंदरगाह हैं, लेकिन 200 छोटे बंदरगाह भी हैं, इनको कैसे पूरी तरह से समेकित रूप से इनका विकास कैसे किया जाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। मुझे लगता है कि जो भारत का जो मैरिटाइम विजन 2030 है या मैरिटाइम अमृतकाल 2047 है, उसको ध्यान में रखते हुए एक समग्र और समेकित विकास की आवश्यकता रही है। और उसके विकास के लिए ही मुझे लगता है बंदरगाह से जुड़ा हुआ या पोर्ट लेड डेवलपमेंट जिसकी हम बात करते हैं, वो आवश्यक एक जरूरत थी और वो पूरी तरह से निखर के आ रही है सामने। दूसरा एक बड़ा पहलू है कि भारत के जो बंदरगाह हैं, हम देखते हैं कि जो पूर्वी क्षेत्र के बंदरगाह हैं और पश्चिमी क्षेत्र के बंदरगाह हैं, दोनों में पहला तो पूर्व और पश्चिम के बंदरगाहों के बीच में क्षमता को लेकर के और उनका जो व्यापार है, एक जो टनेज का टर्नओवर है, उसको ध्यान में रखते हुए ही पूर्व और पश्चिम में बहुत अंतर है। पश्चिम के पोर्ट बहुत विकसित है और मुंबई का जो बंदरगाह है उस पर बहुत ज्यादा लोड था, और इसको ध्यान में रखते हुए गुजरात के जो नए बंदरगाहों का अपग्रेडेशन हो रहा है वो बहुत आवश्यक था। इसमें पूर्व और दक्षिण के बंदरगाहों पर भी काफी व्यापक स्तर पर काम हो रहा है। आगे आने वाले समय में भारत की विकास की गति को सामने रखते हुए इन बंदरगाहों के विकास पर भी काम होगा और तभी भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में निखर कर सामने आ पाएगा।
1: बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि अब प्राइवेट पोर्ट्स भी बहुत मेजर हो गए हैं, अगर हम देखें पीपावाव या हजीरा या मुंद्रा अब बाय वॉल्यूम सबसे बड़ा पोर्ट है भारत में, और जो पोर्ट कैपेसिटी है उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। 2014-15 में 1561 MTPA मिलियन टन्स पर एनम था और अब वो बढ़कर 2817 पर पहुंच गया है, और जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है वो भी 96 घंटों से कम होकर 49 घंटे आ गया है। आप हमें बता सकते हैं कॉमोडोर जोशी की जो ये एवरेज टर्न अराउंड टाइम है ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये किस तरह से एफिशिएंसी बढ़ाता है, जो पोर्ट लेड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं उसको गति देता है?
0: आपने बिल्कुल सही आंकड़े दिए हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये टर्न अराउंड टाइम अभी थोड़ा और भी शायद कम हो रहा होगा, क्योंकि जो सरकार का बेसिक अगर आप एक उद्देश्य मान लें कि टर्न अराउंड टाइम कम करने से पोर्ट में ज्यादा जहाज आएंगे, ज्यादा माल की ढुलाई होगी, ज्यादा माल उनपे लोड किया जाएगा, तो ये पूरा का पूरा जो काम होता है उससे पोर्ट का जो टर्नओवर कहते हैं आप, मुनाफा कहते हैं फाइनली, वो बढ़ेगा। तो अगर पहले क्या होता था, ये सारे जहाज जाते थे, दो दो तीन तीन दिन एक पोर्ट में ये रहते थे, सामान की आवाजाही उतर रही है, कंटेनर उतर रहे हैं, कंटेनर चढ़ रहे हैं,

0: तो ये 2-3 दिन का टाइम लगता था। तो अभी अगर जैसे आपने बताया कि ये समय बहुत कम हो गया है, उस हिसाब 3 दिन में होता तो अभी 1 दिन में 3 जहाज निकल गए, पहले एक ही जहाज निकलता 3 दिन में। तो उस हिसाब से टर्नओवर पर शिप अगर देखें तो 3 टाइम्स हो गया है। उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक पूरा जो आर्थिक अपनी जो गति है देश की, उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक पैमाना है, टर्नओवर टाइम कितना है और इसको कौन देखता है। ये जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस है, वर्ल्ड बैंक का ये कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस का इंडेक्स है,
1: जी
0: वो ये सारे मेजर करके ये देखते हैं कि कौन कौन कैसे परफॉर्मेंस चल रही है इन सब चीजों में।
1: जी
0: एक ये पैमाना, उसके अलावा बहुत भी होंगे। अगर आप देखें इनका जो लेटेस्ट इंडेक्स आया हुआ है, उसमें टॉप 30 में हमारे 3 पोर्ट्स आ रहे हैं। जैसे आपने सही बोला, मुंद्रा पोर्ट है गुजरात का, पारादीप पोर्ट है उड़ीसा में, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई का। ये
1: जी
0: 3 पोर्ट टॉप 30 में भारत के हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा देश के लिए ये एक गर्व करने की बात है कि ये हमारा देश एक ऐसी दिशा में जा रहा है जो थोड़ा वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छी मानी जाएगी।
1: जी बिल्कुल। इसी संदर्भ में हम आपसे जानना चाहेंगे प्रोफेसर कि जब हम बात करते हैं पोर्ट लेड डेवलपमेंट की या जो लॉजिस्टिक्स है समुद्री यातायात, तो उसमें कौन कौन से ऐसा कार्गो है जो बहुत हमारे लिए क्रिटिकल है, हमारे देश के लिए, जो समुद्री जो रास्ते हैं उनसे वो उसकी आवाजाही होती है और जिसके कारण ये जो समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर इतना बल दे रही है सरकार?
2: यहाँ कुछ मूलभूत बातें हैं जिनको समझना आवश्यक है
1: जी।
2: हमारे लिए भी और श्रोताओं के लिए भी, कि भारत का और दुनिया का अधिकतम व्यापार 90-95% से ज्यादा व्यापार वो शिपिंग रूट से ही होता है, समुद्री जहाजों से होता है, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है और उससे ज्यादा माल की ढुलाई हो सकती है। इस बात को हम ध्यान रखें। पहली चीज ये है कि जितना तेल और गैस का व्यापार होता है वो सारा व्यापार समुद्री जहाजों के माध्यम से होता है, जितना हैवी कार्गो जाता है वो भी समुद्री जहाजों के माध्यम से जाता है, और इसके साथ ही साथ भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे आने वाले खाद्य पदार्थों का आयात और निर्यात भी समुद्री क्षेत्र से होता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर ये समुद्री यातायात की जो ये जो लाइफ लाइन्स हैं इनको अगर रोक दिया जाए तो दुनिया में व्यापार ही नहीं, दुनिया का चलना मुश्किल हो जाएगा। और ये हमने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस में हमने ये बात देखी कि जब वहां से जहाजों का आवागमन रुका या उस पर एक तरह से नियंत्रण लगा तो दुनिया के तमाम देश, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों में ऊर्जा को लेकर के बहुत बड़ा संकट हो गया। भारत ने इस संकट को बहुत अच्छे से टैकल किया, ये एक प्रशंसनीय बात है, लेकिन हमने देखा कि कैसे दुनिया के तमाम देशों पर ऊर्जा के क्षेत्र में जो अपने को बहुत ही स्वावलंबी मानते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, उनके लिए भी यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो गई थी। तो इसलिए कार्गो के क्षेत्र में हम देखते हैं कि रोजमर्रा की जरूरतों के साथ साथ आयरन और स्टील जैसी चीजें, रबर जैसी चीजें जो औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है, लोगों के जीवन में जो खाद्य पदार्थ हैं या जो सामान उनके आम जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी होते हैं उनकी भी, तो किसी भी देश की आर्थिक प्रगति, उसका एक सस्टेनेबल रहना और उसकी जो जनता है, उसके जो नागरिक हैं, उन लोगों का जीवन भी सुगम रूप से चले, इन सभी के लिए मैरिटाइम रूट्स और शिपिंग रूट्स की आवश्यकता है।
1: और कॉमोडोर श्री, जैसा कि प्रोफेसर मिश्रा ने बताया कि हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए, एक आम नागरिक के लिए जो जरूरत की चीजें हैं उनके लिए भी ये जो समुद्री कारोबार है कितना जरूरी है। अगर हम मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप नेवी में रहे हैं तो आप बता सकते हैं हमें कि इसी संदर्भ में ये जो आवाजाही भी सुगम रूप से बनी रहे, मैरिटाइम सिक्योरिटी का कितना बड़ा एक एस्पेक्ट है जो हर देश के लिए और खासकर अब जब भारत की बात कर रहे हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
0: आपने एक जो एक पॉइंट निकाला है मैरीटाइम सिक्योरिटी का, वो एक बहुत ही अहम मुद्दा है। आज से नहीं, पिछले 15-16 साल से जब ये दुनिया में जब इनका फूतीज जो थे या यहाँ पे जो हाईजेक हो रहे थे जहाज और उनसे रैंसम मांगी जाती थी और पूरा का पूरा जहाज बोर्ड कर लिया जाता था और समुद्री जो लुटेरे होते हैं वो आते थे एंड अभी भी आते हैं, और उसके कारण 2008 के करीब से भारतीय नौसेना ने इस एरिया में पेट्रोलिंग शुरू की थी और वो पूरा का पूरा जो जो एंट्री पॉइंट्स हैं ये मिडल ईस्ट के, उसमें बहुत सारे देशों का एक कंसोर्टियम कह सकते टन बाय टन आते थे और काफी अच्छी पेट्रोलिंग के कारण ये जो समुद्री लुटेरे आते थे उनका जो इवेंट्स थे, इंसिडेंट थे सारे बहुत कम हो गए। अभी अगर आप देखें ये क्यों हुआ ये सारा, जब तक आपके पास नौसेना का बल नहीं है आप अपने सी लेन्स जो समुद्री रास्ते हैं समुद्री जहाजों के आने जाने के लिए जो रास्ते बने हुए हैं वो आप

0: सिक्योर नहीं कर सकते, वो खुले पड़े रहेंगे। कोई भी आएगा रास्ते पे आपके जहाजों को वो लेके जाएगा, रैंसम मांगेगा या जो भी करेगा आगे। वो सिक्योर तभी हो सकते हैं जब नौसेना के जहाज उन सी लेंस को सिक्योर करे। तो एक ये जो एक काम है भारतीय नौसेना का, एक प्रमुख काम है, पीस टाइम वर्क कह सकते हैं आप, कि जब युद्ध ना चल रहा हो एक मेजर काम रहता है। और
1: जी
0: हमारे जहाज कंटिन्यूअसली वहां पिछले इतने सालों से पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, दो दो तीन तीन जहाज होते हैं वहां पे। तो उसके कारण मेरे ख्याल से आप ये कह सकते हैं कि अगर देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही है तो उसके लिए एक सशक्त सेना कुछ सालों में सरकार ने ये काम किया हुआ है। अगर आप जहाजों का थ्रूपुट देखें, जो नेवी के जहाज बन रहे हैं वो काफी सारे जहाज लॉन्च हुए हैं, काफी सारे जहाज कमीशन हुए हैं और बहुत मॉडर्न जहाज हैं। आज की तारीख में भारतीय नौसेना जो है वो एक सशक्त और आप कह सकते हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बोलते हैं
1: जी
0: इंडियन ओशन रीजन, तो जिसमें अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल भी आ जाता है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भारतीय नौसेना को माना जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत ही जरूरी है दोनों का पैरेलल विकास जिस पर पूरा बल दिया गया है पिछले कुछ वर्षों में। प्रोफेसर मिश्रा, अगर आपके पास आए तो सागरमाला प्रोग्राम जो सरकार का 2015 में शुरू हुआ पोर्ट लेड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें मैकेनाइजेशन, जो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी का जमाना है तो डिजिटल सिस्टम्स को पोर्ट ऑपरेशंस में इनकॉर्पोरेट करना, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इस सबको आप कैसे देखते हैं? ये जो एक कहें कि फोकस्ड एफर्ट है सरकार का।
2: देखिए, सागरमाला जो परियोजना 2015 में जिसको लॉन्च किया गया, उसके पीछे जो महत्वपूर्ण उसके उद्देश्य थे वो ये थे कि भारत के तमाम बंदरगाह पुरानी तकनीक पर चल रहे थे, जिसमें बहुत ज्यादा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट था और उसमें बहुत ज्यादा जो पुराने किस्म के तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा था। सागरमाला परियोजना के तहत ये बात की गई कि बंदरगाहों का न सिर्फ उनका आधुनिकीकरण करना है बल्कि बंदरगाहों के बीच में आपस में कनेक्टिविटी हो। और एक बार जब किसी जहाज से, किसी कार्गो या कंटेनर शिप से जब माल वो बंदरगाह पर डॉक होता है तो वहां से रोड कनेक्टिविटी कैसी है, और तमाम बंदरगाहों के साथ एक ये भी समस्या भारत में पहले रही है कि उनके लिए जो इनेबलिंग इकोसिस्टम है वो नहीं था, तो उसके विकास के लिए भी सागरमाला परियोजना में ध्यान दिया गया। साथ ही साथ इस इकोसिस्टम में ये बात की गई कि किसी भी बंदरगाह में सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि वहां पर एक पोर्ट फैसिलिटी है, डॉकिंग फैसिलिटी है और वहां पर सामान उतर गया, उस सामान का स्टोरेज कैसे हो और वो अत्याधुनिक तकनीक पर कैसे बेस्ड हो। तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जो परिवहन है, चाहे वो जल परिवहन हो, चाहे वो रोड परिवहन हो या रेलवे के रास्ते जाए, उसको कैसे विकसित किया जाए, और खास तौर से जो इनलाइन वाटरवेज हैं उनके विकास की कोशिशें की गई। तो सागरमाला परियोजना मुझे लगता है कि एक बहुत क्रांतिकारी कदम रहा है पोर्ट लेड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भारत में, और इसने भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बहुत तेजी से दुनिया की तमाम जो अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे कॉम्पीट करने और उनके बराबर चलने की क्षमता प्रोवाइड की है। 845 परियोजनाओं को नामांकित किया गया था 2015 में और उनमें से 315 परियोजनाएं अभी पूरी हो चुकी हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि सागरमाला इनिशिएटिव, जैसा कि नाम भी खुद ये बताता है कि ये तमाम जो भारत के बंदरगाह हैं उनको एक माला की कड़ियों की तरह जोड़ना है, जिससे कि उन तमाम बंदरगाहों में आपस में भी कनेक्टिविटी रहे, एक कोऑर्डिनेशन रहे, अत्याधुनिक तकनीक से वो जुड़े रहे, कम्युनिकेशन और उन कोऑर्डिनेशन की उनमें लगातार एक सुगम यातायात रहे, और साथ ही साथ इस पूरी बंदरगाहों के विकास और उनके अत्याधुनिकीकरण के साथ साथ भारत के आम नागरिक, छोटे जो व्यापारी हैं, जो लोग पर्यावरण संबंधी मुद्दों से जुड़े हुए हैं या जो लोग टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए भी ऐसी व्यवस्थाएं और ऐसी परियोजनाएं चलाना कि वो भी जब बंदरगाहों का विकास हो और ज्यादा ढुलाई हो, व्यापार बढ़े तो लोग,
1: और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम हुए हैं, समय जो लगता था उस सामान को पहुंचाने में वो भी कम हुआ। आपने इनलैंड वाटरवेज की बात करी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स है हमारे सामने कि लगभग 700% बढ़े हैं कार्गो मूवमेंट इनलैंड वाटरवेज में। सो इस संदर्भ में जो हमारा कहें कि जो वाराणसी मल्टी मोड टर्मिनल है, जो पहला मल्टी मोड टर्मिनल है गंगा नदी पर, जो गवर्नमेंट की जल मार्ग विकास परियोजना है, ये आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है, जैसे आप कह रहे थे कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने के लिए और जो समय है उसको भी कम करने के लिए?
2: देखिए, इनलैंड वाटरवेज भारत में उनकी परिकल्पना बहुत पहले से रही है, लेकिन इनलैंड वाटरवेज का उतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं हो सका, और क्योंकि भारत में गंगा नदी मुख्य रूप से

0: गंगा नदी के रास्ते बनारस से लेकर वाराणसी से लेकर कलकत्ता तक का एक वाटरवे बनता है जिसमें तमाम जो छोटे और बड़े शहर हैं वो उसके जुड़ सकते, जिसमें वाराणसी को एक बहुत प्रमुख स्थान दिया गया क्योंकि सीधे इस इनलाइन वाटरवे के माध्यम से भारत के उत्तरी जो राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, तमाम ये जो प्रदेश आते हैं जो किसी भी तरह से किसी भी बंदरगाह से या समुद्र तट से जुड़े नहीं है, उनके लिए कैसे ये व्यवस्था की जाए कि वो भी पोर्टलेट डेवलपमेंट में हिस्सेदार बने और उनके जो निर्यात के सामान है या उनके लिए जो सामान बाहर से आ रहा है उसको कैसे जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। क्योंकि देखिए शिपिंग में और जो समुद्री व्यापार है ये वैसे ही है, एक बहुत अच्छा उदाहरण तो नहीं है लेकिन किसी व्यक्ति को जब हार्ट अटैक आता है तो उसके जो 3 घंटे और 4 घंटे होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी तरह जब कोई माल खासतौर पर खाद्य पदार्थ जब वो किसी बंदरगाह पर डॉक होता है, जब उसको उतारा जाता है, वहां से कितनी जल्दी वो बाजार पहुंच सके, मार्केट में पहुंच सके, लोगों के पास पहुंच सके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खाद्य पदार्थों के मामले में ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर वो 48 घंटे और 72 घंटे के बाद पहुंचेगा तो आधे से ज्यादा सामान खराब हो जाएगा। भारत के उत्तरी राज्यों के लिए ये एक विशेष चिंता की बात है क्योंकि जैसे अगर हम आम, क्योंकि उत्तर भारत के तमाम प्रदेशों में आम निर्यात करने की कोशिश होती है, उनके हमेशा अंतरराष्ट्रीय मार्केट तक पहुंचने से पहले ही सड़ जाते थे, तो इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इनलाइन वाटरवेज पर खास ध्यान दिया जाए और उनको विकसित किया जाए। और इसीलिए मुझे लगता है कि वाराणसी मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट या नमो घाट और तमाम जो परियोजनाएं वाराणसी में चल रही हैं उनका एक बहुत दूरगामी परिणाम होगा इनलाइन वाटरवेज को आगे बढ़ाने में और उनके योगदान को बढ़ाने में पोर्टलेट डेवलपमेंट की जो संकल्पना है भारत की आर्थिक विकास।
1: आपने बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी देकर हमें ये बात समझाई है। कॉमोडोर जोशी, आपके पास हम आते हैं। विजिंगजाम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट जो केरला में विकसित हुआ है, 2015 में ये इनॉग्रेट हुआ, कैसे देखते हैं आप इसको? ये ग्लोबल सी रूट से हमें कनेक्ट करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये?
2: जी, अगर आप थोड़ा नक्शे पे ध्यान दें दुनिया के, तो आज की डेट में एक प्रोसेस बोला जाए, एक तो ट्रांसशिपमेंट का एक प्रोसेस है और वो सिंगापुर आज की डेट में सबसे बड़ा एक पोर्ट है जिसमें ये सबसे ज्यादा ट्रांसशिपमेंट होती है। ट्रांसशिपमेंट का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े जहाज बहुत सारा सामान लेके आते हैं उनको पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करना मतलब कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, बहुत ज्यादा उसकी कीमत लगती है। तो क्या किया जाता है कि समझिए आप सिंगापुर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो ईस्टर्न साइड से सामान आ रहा है वो सिंगापुर में छोटे जहाजों में जाएगा, कंपैरेटिवली छोटे जहाजों में, और फिर वो बाकी वेस्टर्न साइड की तरफ मतलब हिंदुस्तान की तरफ मलाका स्ट्रेट से होता हुआ इस तरफ आएगा या फिर मिडल ईस्ट या जो भी अफ्रीका में जाना है वो जाएगा। तो एक प्रोडक्शन सेंटर है, एक ट्रांसशिपमेंट सेंटर है। अगर हमारी ज्योग्राफी देखा जाए, पेनिनसुलर कंट्री बोलते हैं अपने को, एंड ये जो विजिंगजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट बन रहा है ट्रिवेंड्रम में
1: जी,
2: वो एक डीप वाटर पोर्ट है। एक 20 से 24 मीटर का ड्राफ्ट मिलता है वहां पे, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स जो है ये उसके बहुत करीब है। इनफैक्ट जो सिंगापुर से लेके जो पर्शियन गल्फ की तरफ लेन जा रही है, मलाका स्ट्रेट से पर्शियन गल्फ की तरफ, वो तो इसके बिल्कुल साथ से होती हुई जाती है। और जो स्वेज कैनाल की तरफ जो लेन जा रही है वो इससे करीब 20 से 30 नॉटिकल माइल, अगर किसी को विजिंगजाम पोर्ट में आना होगा तो 20 से 30 माइल का डायवर्जन लेना पड़ेगा। तो ये लोकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या होगा कि जो समझिए आप मिडल ईस्ट से, यूरोप से, मेडिटेरियन से सुएज कैनाल के थ्रू होते हुए जहाज इधर आ रहे हैं वो सारे के सारे ट्रांसशिपमेंट अपने यहाँ हो सकती है और फिर यहाँ से जहाज या तो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होंगे या फिर ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड जाएंगे। सो मेरे ख्याल से ये जो एक दूरगामी जो परिणाम है इसका वो काफी आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 24-25 में करीब करीब 1.2 बिलियन TEUs जो यूनिट होती है, 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट बोली जाती है, वो इसका थ्रूपुट हो चुका है। और जब फेज टू और फेज थ्री खत्म होएगा 2028 तक
1: जी,
2: तो उस टाइम पे जो इनका जो एम है, टारगेट है, एक विजन है कि 4.5 मिलियन TEU से ऊपर का व्यापार होगा यहाँ पे, और फाइनल फेज 2040 में 7.2 मिलियन TEUs का होने का उद्देश्य है इस बात।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जन सेवा से देश सेवा श्रृंखला और आज हमारी चर्चा का विषय है बंदर का समुद्र।

0: और नई आर्थिक शक्ति। और हमारे साथ दो विशेषज्ञ आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं, कॉमोडोर केडी जोशी डिफेंस एनालिस्ट और प्रोफेसर राहुल मिश्रा स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट। प्रोफेसर मिश्रा आपके पास आते हैं, एक जो बहुत ही रोचक और कहें कि बहुत ही उपयोगी ग्रास रूट्स लेवल पे जो प्रोग्राम है समुद्र तट के विकास को लेकर गुजरात ने, जहां पे सबसे ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन है, सागर खेड़ू सर्वांगी विकास योजना जो 2007 में शुरू की, इसको आप कैसे देखते हैं जिसमें लगभग 13,000 जो कोस्टल विलेजेस हैं वहां पर बिजली पहुंचाने की और उसको निर्बाध रूप से पहुंचाने की व्यवस्था पर बल दिया गया है?
1: देखिए, ये जो परियोजना है सागर कांठा के तमाम जो जिले हैं जिसमें कच्छ, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़ और तमाम भावनगर, अहमदाबाद, ये सभी उसमें आते हैं। इन तमाम शहरों के साथ एक समस्या ये थी कि जो बुनियादी ढांचा है, चाहे वो बिजली की आपूर्ति हो या पीने के पानी की सतत आपूर्ति हो, इन तमाम मुद्दों पर जो सामुद्रिक क्षेत्र का विकास होता है, खारे पानी के प्रवेश को रोकना, एक गुजरात के तमाम बंदरगाहों के साथ एक समस्या ये है कि क्योंकि वहां पर हाई टाइड के साथ बहुत ज्यादा सिल्टिंग हो जाती है और जो गाद आ जाती है उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। बहुत पहले के समय में, आज से हजार साल पहले भी, जब लोथल एक मानव निर्मित जब बंदरगाह बनाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता के समय, आज से 3,000 साल पहले, बल्कि उससे ज्यादा, तब भी यही समस्या आई थी कि बहुत सारी गाद जो है वो बंदरगाह और उसके रास्ते उस क्षेत्र के अंदर आ गई। तो खारे पानी के साथ साथ इन तमाम समस्याओं से निपटने के लिए इस योजना का की संकल्पना की गई और मूलभूत तौर से इसका उद्देश्य ये है कि जो लोग, जो जनता इन बंदरगाहों के आसपास रहती है, जो इन बंदरगाहों से होने वाले व्यापार और इन बंदरगाहों के सुचारू रूप से चलाने के लिए जिनकी जरूरत है, उनकी जो डेली लाइफ की जो आवश्यकताएं हैं उनको कैसे पूरा किया जा सके, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए इंटरनल पीपल सेंट्रिक कनेक्टिविटी को कैसे जोड़ा जाए, उनके लिए पीने का पानी कैसे मुहैया कराया जाए और तमाम इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, इसके लिए इस परियोजना को चलाया गया था। तो इसका फोकस बहुत ही लोकलाइज था, लेकिन इसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि ये किसी भी बंदरगाह के लंबे समय तक और सुदृढ़ रूप से चलने के लिए बहुत आवश्यक
0: है, कह सकते हैं एक तरह से मॉडल है। और सागरमाला के तहत 11 जो फिशिंग हार्बर प्रोजेक्ट्स हैं जिसके तहत 30,000 जो मछुआरे हैं उनको फायदा हुआ है, आपको लगता है ये भी बहुत होलसम होलिस्टिक अप्रोच है?
1: जी बिल्कुल, दुनिया के तमाम देश जिन्होंने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण किया है और उनके विकास पर ध्यान दिया है, उन्होंने ये भी देखा है कि जो छोटे मछुआरे हैं, जो लोकल अर्थव्यवस्था है वो बंदरगाहों पर जो निर्भर है या तटीय क्षेत्रों पर निर्भर है, उनको कैसे इस बंदरगाह के विकास में या पोर्टलेट डेवलपमेंट में से जोड़ा जा सके, क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है और ऐसे भी उदाहरण है दुनिया के तमाम बंदरगाहों के जहां बहुत तेजी से विकास हुआ, बहुत तेजी से उनको डेवलप किया गया और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बंदरगाह बन गए, लेकिन जो जनता उससे जुड़ी हुई थी वो कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज हो गई। इन तमाम सागरमाला के तहत इन तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके पीछे एक बड़ा उद्देश्य ये है कि जब हम आर्थिक प्रगति और आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, ज्यादा बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन और बहुत ज्यादा आयात और निर्यात की बात कर रहे हैं, तो हम आम जनता के कंसर्न्स और उनकी जरूरतों को कहीं पीछे ना छोड़ दें। तो ये एक बहुत ही होलिस्टिक, बहुत ही समेकित परियोजना है सागरमाला, और इसके तहत मुझे लगता है कि जनता विकास के साथ साथ आर्थिक प्रगति दोनों को जोड़ने की कोशिश की गई।
0: बिल्कुल, कॉमोडोर जोशी, अभी प्रोफेसर मिश्रा ने एक मेंशन किया लोथल जो गुजरात में, वहां पर जो नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्योंकि ये एंशंट जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहां डॉकयार्ड था 4,500 वर्ष पुराना, तो ये जो हमारी एक हिस्ट्री है मैरिटाइम हिस्ट्री, उसके लिए आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा उसको शोकेस करने का और पूरे देश के गौरव के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है? कहा जा रहा है ये विश्व का सबसे बड़ा मैरिटाइम म्यूजियम होगा जब ये बन जाएगा तो?
2: जी सुनो जी, बिल्कुल सही आप दिशा में आपने जो बोला है, ये जो 4,500 साल पहले जब ये बनाया गया था इसमें एक ड्राई डॉक भी होता था, तो मतलब आप सोचिए कि कितना एडवांस वो सिटी होगा जिसमें एक जहाजों को अंदर लाके ड्राई डॉकिंग की भी फैसिलिटी बनाई गई हुई थी। तो उस हिसाब से मैरिटाइम कल्चर जो बोलेंगे या फिर इंडियन सिविलाइजेशन का या इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मैरिटाइम कल्चर था जी, वो कहीं ना कहीं आज की डेट में हम सारे हमारे देश के लोगों को थोड़ा सा, हमें जानकारी नहीं है, हमें उस चीज का ज्ञान नहीं है। और मेरे ख्याल से जब ये नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जब बन पूरा हो जाएगा, ये दो फेजेस में बन रहा है और पहला फेज में फेज ए और फेज बी भी है, जब ये पूरा हो जाएगा मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही आकर्षक जगह होने वाली है जिसमें अपने आप में ये डेस्टिनेशन हो जाएगा कि आप लोग वहां पे जाएंगे और

0: एक मैरीटाइम जो हेरिटेज है
1: जी
0: उसको कैसे हिंदुस्तान ने प्रिजर्व किया है, और आज पास्ट, आज की डेट में और फ्यूचर, ये तीनों कैसे इंटीग्रेट होके उस जगह पे दिखाए जाएंगे, ये मेरे ख्याल से जनसाधारण के लिए ये एक अच्छी परियोजना जो है वो स्थापित हुई है, और
1: जी
0: जब ये कंप्लीट हो जाएगी मेरे ख्याल से एक ये बहुत ही अच्छा, एक आप कह सकते हैं एक दर्शनीय स्थल हो जाएगा लोगों के लिए, वहां पे भी जाना बहुत आवश्यक हो जाएगा।
1: प्रोफेसर मिश्रा, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नेदरलैंड्स और वियतनाम के साथ मिलकर उनसे भी लिया जा रहा है टेक्निकल एडवाइस, तो कैसे देखते हैं आप इस प्रोजेक्ट को?
2: मुझे लगता है इसमें दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, विकसित भारत 2047 में भारत को एक आर्थिक महाशक्ति ही नहीं बनना है, भारत को अपने जो इतिहास को प्रेजेंट करने में जो गलतियां की गई हैं उनको भी सुधारना है। तमाम तथाकथित इतिहासकार जो भारत के हैं और भारतीय इतिहास पर लिख चुके हैं, वो ये हमेशा से कहते आए हैं कि भारत कभी एक मैरिटाइम नेशन नहीं रहा है, ये तो एक कॉन्टिनेंटल देश रहा है जिसने कभी समुद्री यातायात या समुद्री सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा। इस नैरेटिव को एक सिरे से नकारने के लिए और इस डिबेट को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए मुझे लगता है इस मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की स्थापना जरूरी थी। और क्योंकि ये इस बात को सामने रखता है कि आज से 5000 साल पहले भी भारत एक समुद्री महाशक्ति था, भारत के पास उस समय की सबसे अत्याधुनिक तकनीक थी जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक बड़ा स्थान रखते थे, हमने मानव निर्मित एक बंदरगाह बनाया जिसको आज फिर रिवाइव करने और उसको एक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में रखने की बात हो रही है। और इससे यह भी सिद्ध होता है कि लोथल जो कि अहमदाबाद शहर का हिस्सा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कितना बड़ा उसका योगदान रहा है। और इसमें आपने जो बात कही नेदरलैंड्स और वियतनाम के साथ सहयोग किए, ये दोनों देश भी, वियतनाम और नेदरलैंड्स दोनों ही देश ऐतिहासिक रूप से बहुत बड़े पोर्ट्स को लेकर के और अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार को लेकर के वो हमेशा से ही बड़े एक्टर्स और बड़े प्लेयर्स रहे हैं। तो उनके साथ सहयोग मुझे लगता है इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम कलेक्टिवली अपनी जो हमारी जो साझा विरासत है उसको भी हम सामने लेकर के आए, और इस लिहाज से एक यूरोपीय देश और वियतनाम जो कि जिसकी अपनी 5000 साल की एक ग्लोरियस उसका इतिहास है उसको भी सामने रखना बहुत जरूरी।
1: सो कॉमोडोर जोशी, जैसा आप दोनों ने ही बताया कि कितना हमारा ग्लोरियस इतिहास है, मैरिटाइम इतिहास, उसको दर्शाया जाएगा, और साथ ही साथ आपको लगता है कि बहुत होलिस्टिक अप्रोच है सरकार का कि विरासत का गौरव उसको बनाए रखना, साथ ही साथ जो मैरिटाइम इंडिया विजन 2030 जिसकी बात अभी प्रोफेसर मिश्रा भी कर रहे थे, जिसमें 150 से ज्यादा पहले हैं 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपए की, और जिसमें पिछले वर्ष का लगभग 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज शिप बिल्डिंग का भी शामिल है, और न सिर्फ ये मैरिटाइम अमृतकाल विजन भी 2047 उसको भी सरकार ने ऑलरेडी उसके बारे में सोचा है एक दूरगामी सोच के साथ। कितना आपको ये अप्रोच कहें कि ऑलराउंड अप्रोच लगता है?
0: बिल्कुल, एक चौतरफा सोच मेरे को दिखती है पूरे इसमें, क्योंकि आप देखिए बंदरगाहों को डेवलप करना, कोस्टल कम्युनिटी को साथ में लेके चलना, जो प्रोफेसर साहब अभी बोल रहे थे कि कई बार मार्जिनलाइज हो जाती है जो लोकल लोग रहने वाले हैं
1: जी,
0: वो बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है लेकिन लोकल लोगों को उनकी सुविधाओं का, उनकी जरूरतों का थोड़ा सा ध्यान नहीं रख पाते हैं बहुत बार। लेकिन अगर आप देखें ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे MIV के तहत हो, चाहे MAKV के तहत हो, या चाहे फिर सागरमाला के तहत हो, पांचवा जो पिलर है सागरमाला का वो है कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट का पिलर है। मतलब पूरा का पूरा एक फंडामेंटल पिलर यही बोल रहा है कि जो हमारी जो कोस्टल कम्युनिटीज है, नॉट सिर्फ पोर्ट में नहीं, सिर्फ बंदरगाहों में नहीं, पूरी कोस्ट में, उन सबको साथ में लेके हमको डेवलप करना है
1: जी।
0: और उनका ध्यान जरूर रखना है। और उसके लिए अगर आप देखिए तो अगर डेवलपमेंट कोस्ट में हो रही है, पोर्ट्स पे हो रही है, तो जो सरकार ने इतना जो बजट आउटले किया हुआ है 3-3.5 लाख करोड़ रुपए का MIV के लिए और करीब करीब 80 लाख करोड़ रुपए का इसके लिए MAKV के लिए, तो ये सारा का सारा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पोर्टलेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो सागरमाला के तहत एक और पिलर माना जाता है, जिसमें इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कोस्टल इको जोन्स, कोस्टल इको यूनिट्स एंड साथ में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनेंगे, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी, और पोर्ट कनेक्टिविटी जो थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था कि कैसे की जाए, तो अभी जिक्र में यही आया कि इनलैंड वाटरवेज के थ्रू समझिए पोर्ट कनेक्टिविटी हो रही है, समझिए आपका जो नेशनल वाटरवे 1 बन रहा है जो वाराणसी और अल्जिया को कनेक्ट कर रहा है, तो हिंटरलैंड जो इंडिया की है वो उनको एक जिसे बोलते हैं उनका दरवाजा खुल गया है समुद्री रास्ते के लिए, क्योंकि इनलैंड वाटरवेज बननी शुरू हो गई हैं। और वैसे ही अगर आप देखे हैं कुछ दिन पहले

0: एक ट्रायल रन हुआ था एक वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर का, जिसमें एक कंटेनर ट्रेन चलाई गई थी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से लेकर वडोदरा तक। तो अभी आप देखिए कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट में हिंदुस्तान ने जो पहला कदम लिया है, पहला देश है जिसने एक बिजली की जो ट्रेन है उसमें डबल डेकर कंटेनर सिस्टम अपनाया है। बाकी
1: जी
0: पूरे दुनिया में सिंगल कंटेनर सिस्टम जाते हैं, मतलब एक के ऊपर एक दो कंटेनर नहीं रखे जाते हैं। तो ये जो ट्रेन गई है, करीब मेरे को लगता है 300 350 कंटेनर यूनिट से लेके गई थी, काफी लंबी ट्रेन थी ये, और ये एक पायलट प्रोजेक्ट माना जा सकता है। और
1: जी
0: ये सारी चीजें इन तीन प्रोग्राम्स के तहत हो रही है। और अगर आप देखेंगे कि अपनी जो लोकल सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनकी जानकारी के लिए मैरिटाइम कॉम्प्लेक्स बन रहा है,
1: बिल्कुल
0: सागर खेड़ू जो सर्वांगी विकास योजना थी गुजरात की, वो
1: जी
0: एक मॉडल था, उसके हिसाब से पूरे देश में वो मॉडल अभी अडॉप्ट हो रहा है किसी ना किसी स्कीम में।
1: जी
0: और उसके बाद में जो पोर्ट्स बन रहे हैं, बड़े बड़े पोर्ट्स बन रहे हैं, इनफैक्ट विंजम पोर्ट है, लेकिन अगर आप वाधवान पोर्ट देखें
1: जी
0: महाराष्ट्र में जो बन रहा है, वो एक और पोर्ट है,
1: जी
0: गलातिया बे का जो पोर्ट है अभी, वो तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोर्ट माना जाएगा, जो अंडमान में बना रहे हैं, जो करीब करीब सिर्फ 40 मील है मलाका स्टेट से। तो
1: जी
0: आप
1: जी
0: देखिए कि आप कैसे पूरा देश में हर जगह पे, पूरी देश की पूरी जो लैंडमास है वो कवर हो रहा है, जो भूमि है देश की, सब जगह कहीं ना कहीं
1: बिल्कुल
0: मैरीटाइम डेवलपमेंट हो रही है, चौमुखी विकास लग रहा है मुझे।
1: जी बिल्कुल कॉमोडोर जोशी, प्रोफेसर मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारी समुद्री अर्थव्यवस्था के समग्र विकास से देश के आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रकाश डालने के लिए।
2: धन्यवाद
0: जी, शुक्रिया।
3: करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, समुद्र, बंदरगाह और नई आर्थिक शक्ति। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक कोमोडोर केडी जोशी और रणनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद।
4: गुड इवनिंग डियर लिसनर्स, दिस इज आकाशवाणी जलंधर। Now you are going to listen to a talk by Dr. B.K. Sharma. The topic is India's rich cultural heritage.
5: The most distinctive feature that separates India gloriously from the rest of the world is her rich cultural heritage. The fifth largest and second most populated nation on the globe, India is one of the countries that can feel proud of an ancient, deep-rooted and diverse cultural history that stretches back to 5,000 years. In ancient times, India was known as Bharatavarsha, the country of legendary king of Bharat, and was supposed to be a part of the island continent called Jambudvipa. Geographically speaking, India formed part of Gondwanaland and was attached to Antarctica and Australia before it was liberated from the Antarctica complex about 135 million years ago and started drifting towards the north and finally joining South Asia about 45 million years ago. Therefore, the factors that contributed to the making of India's rich cultural heritage clearly reflect that Indian civilization imbibed multiple customs, food habits, dresses, and methods of war from other civilizations which flourished in this country while equally maintaining and spreading its culture. Extensive archaeological excavations carried out at Mohenjo-daro in 1922 brought to light the existence of highly sophisticated and urbanized culture known as Harappan civilization in India dating back to about 2600 to 2000 BC, which dominated the northwestern part of Indian subcontinent. It is believed that this civilization covered an area of 1600 km from east to west and 1100 km from north to south, which exceeds the area occupied by contemporary civilization like the Egyptian and Mesopotamian civilization. The next significant phase in the Indian history came centuries later with the advent of Aryans from the northwest of India. The Aryan migration to India was gradual and spread over many centuries. The Aryan developed a remarkable culture popularly known as Vedic culture, which was markedly different from Harappan culture. Such migrations, which faced resistance from the opposite and established cultures over a large period of time, became the cause of endless diversity in India. It started from its physical features to geologic structure, fauna and flora, demographic structures, races, languages, religions, arts and crafts.

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुण तुसी समात फरमाओ एक खूबसूरत गजल चंदन दास दी आवाज़ च।

0: अणथक योगदान ते उन्हां नूं मिले इस पवित्र सन्मान ते।
1: संत निरंजन दास जी आध्यात्म
0: महापुरखां ने साची कहा है, जिथे पंजां दरियावां दा वगदा है पानी, उत्थे गुंजे विरासत दी मिठी कहानी। साडा पंजाब जिस दी मिट्टी विच्चों सेवा, कुर्बानी, किरत ते हुनर दी खुशबू आउंदी है, जिथे सरबत दे पले दा सुनेहा हर घर दी देली ते लिखिया है, ते अपणियां जड़ां नाल जुड़ के जीउणा साडी मूल पछाण है। पर जदों किसी पिंड दी गली विच्चों, किसी खेत दी वट तों या किसी छोटी जी झोंपड़ी विच्चों उठ के कोई सधारण इंसान अपने हुनर ते समाज सेवा नाल पूरे देश दा नां रोशन करदा है, तां साडा सीना माण नाल चौड़ा हो जांदा है। जरा याद करो, वातावरण दे रहबर संत बलबीर सिंह सिचेवाल जी दा ओ अलौकिक योगदान, जिन्हां ने पवित्र गुरबाणी दे महान बचन पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत नूं सिर्फ पढ़िया ही नहीं, सगो अपने हत्थां नाल अमली रूप भी दिता। बिना किसी सरकारी बजट, बिना किसी वड्डी मशीनरी दे, केवल संगत दी निष्काम कार सेवा ते सिदक नाल 160 किलोमीटर लंबी इतिहासिक काली वेई नदी नूं मुड़ सुरजीत करके दुनिया सामने वातावरण संभाल दी ओ मिसाल कायम कीती, जिस अगे अज विश्व भर दे विज्ञानी भी नतमस्तक हुंदे ने।
2: पहला पानी जीओ है जित हरिया सब कोए, बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लिखिया। गुरबाणी से प्रेरित होकर हम जे सेवा का पर्यावरण को बचाने का कार्य शुरू किया। इस मॉडल को भारत सरकार ने गंगापुर अडॉप्ट किया, क्योंकि जे मॉडल हर गांव में, हर शहर में, अकेला पंजाब में नहीं, सारे भारत में नहीं, ये पाकिस्तान, नेपाल, फिलिपाइन और जितने गर्म मुल्क है, सब मुल्क में जे मॉडल अपनाया जा सकता है। हजार में पवित्र बैंक की सेवा का कार्य आरम्भ हुआ। जब से इसमें गांवों और शहरों की गंदगी पड़ने लगी और लोग जो श्रद्धा से आते थे वो नाराज होकर वापस जाते थे, हमें के सबसे पहले जो पानी को बचाने का, पर्यावरण को बचाने का काम पवित्र बैंक से शुरू किया जाए। पद्म श्री दे नाल भारत सरकार ने नाम नॉमिनेट किया है, उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्हें इस प्रयास में अपना तन मन धन से सेवा की और सरकार ने इसको सम्मान दिया है।
0: साढ़े पंजाब दे दूर दुराडे पिंडां दी मिट्टी विच अणगिणत अजे हीरे छुपे हुए ने, जिन्हां ने अपनी पूरी जिंदगी साड़ी अमीर विरासत, कला, साहित ते रवायती खेड़ां दे लई खिला दित्ती। पिंडां दीआं छिंजां विच रवायती पहलवानी दे जोर दिखाउण वाले अखाड़ियां दे शेर, शास्त्र विद्या गतका दी मर्यादा नूं संभालण वाले सूरवीर ते साड़ियां विसर रहियां इतिहासिक लोक गाथावां ते बोलियां नूं अपणियां हिक्कां विच सांभी बैठे साड़े सतिकारयोग बजुर्ग। जदों अजे गुमनाम रूहां नूं राष्ट्रीय मंच ते पद्म सन्मान नाल नवाजिया जांदा है, तां इह केवल एक व्यक्ति दा सन्मान नहीं हुंदा, इह सन्मान हुंदा है साडी अणखी पंजाबीयत दा, साडे पिंडां दे सभ्याचार दा, साडी अमीर विरासत दा। इसे रंगमंच ते पंजाबी सिनेमा दी बुलंद आवाज वैटरन अदाकारा निर्मल ऋषि जी इस गल दा पुख्ता सबूत ने। जदों असी खेडां दे मैदान वल तकदे हां तां मोगा दी धरती तों उठ के भारतीय महिला क्रिकेट टीम दी कप्तान बनी हरमनप्रीत कौर, जिन्हां दी इतिहासिक प्राप्ति साडा सिर माण नाल उच्चा कर दिंदी है। साल 2026 विच जदों उन्हां नूं खेडां दी दुनिया विच बेमिसाल योगदान लई पद्म श्री दा सन्मान मिलदा है, तां इह सन्मान पंजाब दीआं धीआं दे अणथक जज्बे ते मैदान च गड्डे झंडियां दी अमर इबारत बन जांदा है।
3: सुश्री हरमनप्रीत कौर भुल्लर, खेल क्रिकेट।
4: इट्स एन ऑनर एंड वेरी इमोशनल फीलिंग फॉर मी टू रिसीव।

0: श्री 2026 कोटी कोटी नमस्कार।
1: पर सवाल हुन ए पैदा हुंदा है कि ए वड्डा बदला आया किवें? आखिर ओ केड़ी चाबी सी जिसने राष्ट्रपति भवन दे बंद दरवाजे आम नागरिकां लई खोल दित्ते? इस दा जवाब है डिजिटल इंडिया ते जन भागीदारी। पहला पद्म पुरस्कारां दी चोण प्रक्रिया बंद कमरियां विच हुंदी सी। कौन किसदा ना सिफारिश कर रहा है, किस आधार ते फैसला हो रहा है, ए किसे नू नहीं सी पता हुंदा। पर सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in दी शुरुआत कीती। इस पोर्टल दी खूबी ए है कि इसने नामजदगी दे अधिकार नू आम जनता दे हाथ विच सौंप दिता। अज तुसी, मैं या कोई भी नागरिक घर बैठे अपने मोबाइल फोन राही किसी भी अजय इंसान दी नामजदगी दाखिल कर सकदा है जिसने समाज ले निस्वार्थ काम कीता होवे। तुहानू सिर्फ उस व्यक्ति दे काम दा वेरवा, कुछ तस्वीरां या सबूत अपलोड करने पैंदे ने। इसका नतीजा की निकलिया? नतीजा ए निकलिया कि पिछले कुछ सालां विच नामजदगियां दी गिनती कुछ हजारां तो वध के लखां तक पहुंच गई। ते सब तो खूबसूरत गल ए है कि हुण अणगौले हीरियां नू लब्भण लई खुद सरकारी टीमां जमीनी पद्धर ते खोज कर दिया ने। पीपल्स पद्मा ने देश दे नौजवानां दे सामने नवे रोल मॉडल खड़े कीते ने। अज दा नौजवान जदों अपनी उम्र दे आखरी पड़ा च पहुंच के भी निष्काम भाव नाल कुदरत दी संभाल करन वाले शख्सियतां नूं देश दे सर्वोच्च मंच ते सन्मानित हुंदिया देखदा है तां उस दे दिल विच कुदरत प्रति अथाह प्यार जागदा है। जदों ओह देश दे दूर दुराडे बर्फीले या पछड़े इलाकियां विच बच्चियां दे भविख नूं रोशन करन वाले गुमनाम रहबरां नूं देश दा वड्डा नागरिक सन्मान लैंदे देखदा है तां उस नूं समझ आउंदी है कि सफलता सिर्फ वड्डियां नौकरियां या धन दौलत दा नाम नहीं, सगों लोकां दी जिंदगी विच रोशनी भरन दा नाम है। अज लोड़ इस गल दी है कि असी भी अपनी आले दुआले अखा खोल के देखिए। साडे मोहल्ले विच, साडे पिंड विच, साडे शहर दे किसे कोने विच कोई अजिहा निष्काम सेवक जरूर होएगा जो शायद पिछले कई दहाकियां तो चुपचाप समाज भलाई दे कम्मां च जुटिया होवे। कोई अजिहा वातावरण प्रेमी होएगा जो रुखां पाणियां नूं बचा रहा होवे, या कोई अजिहा दानी होएगा जो बेसहारा जिंदड़ियां दा सहारा बनिया होवे। ओ शायद कदे वड्डे शहरां तक ना पहुंच सकन, शायद उन्हां नूं ऑनलाइन फॉर्म भरना भी ना आउंदा होवे, पर ए तुहाडा ते साडा नागरिक फर्ज बनदा है कि जदों भी पद्म पुरस्कारां दीआं नामजदगियां शुरू होण तां सरकार वल्लों बनाए गए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल ते असीं उन्हां दी प्रेरणादायक कहानी जरूर लिख के भेजिए, क्योंकि पीपल्स पद्मा दी ए शानदार सरकारी पहल उदो ही सच्चे अर्थां विच कामयाब होएगी जदों देश दे हर अणगौले नायक नूं उसदा बणदा सन्मान ते हक मिलेगा।
2: हुण तुसीं सुन रहे सी जन सेवा तों देश सेवा लड़ी तहत विशेष प्रोग्राम पीपल्स पद्मा, भारत दी राष्ट्रीय पछाण दी नवी परिभाषा। पेश कर रहे सन पूनम, पेशकश प्रतिष्ठा जैन। ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। आहुन सुनदे आं जुबिन नौटियाल दी आवाज दे विच एक देशभक्ति गीत।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 8:45 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ, 9 ਵਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਟ 9 ਤੇ 9:15 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪੋਟਲਾਈਟ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी, सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच आज सौहार्दपूर्ण और सार्थक बातचीत हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
2: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
1: प्रधानमंत्री ने भारत में ब्लूमबर्ग के 30 वर्ष पूरे होने पर उसे बधाई दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी केंद्रीय बजट की तैयारियों के दौरान सरकार दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर हटाने के सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है। श्रीमती सीतारामन ने आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के दौरान अपने संबोधन में ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज कहा कि बिम्स्टेक देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस क्षेत्र का कोई भी हिस्सा आतंकवादी नेटवर्क

0: को पनाह लेने, सदस्य बनाने, ट्रेनिंग लेने, फंड जुटाने या पड़ोसी देशों के खिलाफ गतिविधियां करने का अवसर न दे। नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। गृहमंत्री ने बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग के 5 अहम क्षेत्रों पर बल दिया, जिनमें ड्रग्स पर नियंत्रण, आतंकवाद रोधी और कानूनी सहयोग, भागे हुए अपराधियों की वापसी, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की जांच तथा संस्थागत सहयोग और क्षमता निर्माण शामिल हैं। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एन मुरुगन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में डॉ मुरुगन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का सफर उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है।
1: मैं तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करना चाहता हूं और 2029 के चुनाव की तैयारी के लिए जमीन तैयार करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने हमेशा तमिल गौरव को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि मुझे मंत्री पद से मुक्त कर तमिलनाडु भेजा जाए ताकि मैं वहां पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर सकूं।
0: डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि मंत्रिपरिषद में पिछले 5 वर्षों के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के धैर्य, करुणा और असाधारण समर्पण को करीब से देखने का अवसर मिला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इंकार इस स्थापित तथ्य को बदल नहीं सकता है।
2: लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। ये कार्य लद्दाख प्रशासन और स्थानीय पक्षों के परामर्श से किया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि इन स्थानों को आधिकारिक मानचित्र में दर्ज करने का उद्देश्य उनकी सटीक पहचान सुनिश्चित करना और आम लोगों में उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावलीचेक से मुलाकात की। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चेक गणराज्य के बीच साझेदारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है।
3: भारत और चेक गणराज्य के बीच आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता पर आधारित गहरे और पुराने संबंध हैं। बदलते समय के साथ भी हमारी ये दोस्ती कायम रही है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की भी अपार संभावनाएं हैं।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है, वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है।
4: जो भी समाज नशे की गिरफ्त में आता है, वहाँ एक पूरी पीढ़ी के बर्बाद होने का खतरा पैदा हो जाता है। अगर हम अपने समाज को नशे से मुक्त करने में सफल नहीं होते, तो विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में हमारे सामने एक बड़ी चुनौती होगी।
1: प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मास्टर प्लान की शुरुआत वर्ष 2021 में आज ही के दिन देश के बुनियादी ढांचे के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से की गई थी।
5: पिछले 5 वर्षों में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक एकीकृत डिजिटल नियोजन मंच से विकसित होकर एक व्यापक भू स्थानिक नियोजन प्रणाली बन गया है, जो अवसंरचना, आर्थिक और समाज

0: क्षेत्र के विकास में सहयोग कर रहा है। इसने जीआईएस आधारित मंच के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों और अवसंरचना नेटवर्क को एक साथ जोड़ा है। आज पीएम गतिशक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 1800 से अधिक डेटा लेयर एकीकृत हैं, जिनमें 58 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों के आधार पर इस मंच पर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली लगभग 400 अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि जीएसटी परिषद जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे अमल में लाया जा रहा है।
2: 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी देश में कर व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके तहत केंद्र और राज्यों के कई करों को एक ही कर व्यवस्था में शामिल किया गया। इससे एक देश एक कर की अवधारणा को बढ़ावा मिला। जीएसटी परिषद के प्रस्तावों का उद्देश्य जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक आसान, पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल बनाना है। पिछले साल जीएसटी में किए गए नए सुधारों के तहत जीएसटी परिषद ने 4 कर दरों 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की जगह अब केवल 2 मुख्य दरें 5 और 18 प्रतिशत कर दी गई है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी के माध्यम से सरकार ने करों की जटिल व्यवस्था को आसान कर दिया है।
3: जीएसटी के जरिए हमने टैक्सेस के एक कॉम्प्लेक्स वेब को नेशनल मार्केट में बदला है। बिजनेस से जुड़े सैकड़ों छोटी मोटी गलतियों को डिक्रिमिनलाइज किया गया है और भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है।
2: नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 58वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि परिषद ने जीएसटी के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान को हटाने की सिफारिश की है।
4: परिषद ने जीएसटी के अंतर्गत गिरफ्तारी के अधिकार को समाप्त करने की सिफारिश की है। इसके अलावा परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने का भी सुझाव दिया है। इसका मतलब है कि 5 करोड़ रुपए से कम की राशि के मामलों में अभियोजन नहीं चलाया जाएगा।
2: 5 करोड़ नो प्रोसिक्यूशन। पिछले 9 वर्षों में कर प्रक्रिया को आसान बनाने और कर दरों में बदलाव से कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को भी मजबूती मिली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देशहित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ कभी भी देने का प्रयास नहीं किया।
1: यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
6: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPA ने बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए आज ये निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच सभी यूपीआई लेनदेन निशुल्क रहेंगे। MDR शुल्क केवल 2000 रुपए से अधिक के ग्राहक से व्यापारी के बीच लेनदेन पर लागू होगा। व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी श्रेणी के अंतर्गत यूपीआई QR कोड के माध्यम से प्रति माह 1 लाख रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को पहले की तरह लेन देन पर कोई MDR शुल्क नहीं देना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
7: घरेलू शेयर बाजार आज 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1109 अंक चढ़कर 73034 पर पहुंच गया। निफ्टी 359 अंक का उछाल दर्ज करता हुआ 22722 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 50 पैसे की मजबूती के साथ 95.28 रुपए पर बंद हुआ।
1: सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को

सतर्क रहने और हवाई हमले की स्थिति के दौरान घरों में रहने की सलाह दी है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय समुदाय की सहायता के लिए 24 घंटे सक्रिय नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। भारतीय नागरिकों को एयरलाइंस के संपर्क में रहने और उड़ानों की ताजा जानकारी लेने की सलाह दी गई है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने प्रागवे में विश्व स्केटिंग गेम्स में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्षीय स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेन देन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी, सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार वेलकुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
1: Spotlight. मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र है। इस वेले रात दे 9:30 बज चुके ने। हुण तुसी सरवण करोगे निर्धारित रागां ते आधारित शब्द कीर्तन।

0: आकाशवाणी जलंधर ते प्रोग्राम चल रहा है तुहाडी फरमाइश और आज दा प्रोग्राम समर्पित है बेमिसाल गायक किशोर कुमार जी नू। किशोर जी सिर्फ एक महान गायक ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन अदाकार संगीतकार ते निर्देशक भी सन। एक प्लेबैक गायक दे तौर ते किशोर कुमार जी ने 1940 तो 1987 दे विचकार 58 साल की उम्र दे विच 16,000 तो वध गाने गाए सी। उन्होंने फिल्म फेयर दे 8 बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड जीत के ना एक अनोखा रिकॉर्ड कायम कर दिता सी जो अज तक कोई तोड़ नहीं सकिया। तो साढ़े प्रोग्राम दे विच भी जिहड़े दोस्तों के फोन मिलते हैं ना वह भी रिकॉर्ड ही होंगे ने क्योंकि प्रोग्राम दे विच फोन मिलना आसान नहीं हुंदा। ते आओ जानदे आं कि आज दा रिकॉर्ड किन्ने बनाया। हैलो,
1: नमस्कार जी। मैडम जी
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: महेश गर्ग, मंडी हरजीराम मलोड़ तो
0: जी। महेश जी दसो, असी तुहानू किशोर जी दी आवाज दे विच केड़ा गीत सुनाइए?
1: फिल्म लवारिस, किशोर प्याशा दे कब के बिछड़े।
0: ए तुहानू गीत बहुत पसंद है?
1: हां जी।
0: ठीक है महेश जी, असी तुहानू ए गीत जरूर सुनावांगे। बहुत बहुत शुक्रिया फोन करन लई।
1: धन्यवाद
0: जी। ते साडे कोल मैसेजेस भी पहुंच के दोस्तां दे, ते इन्हां नूं भी शामिल करदे हां। गुरंदिता मल्होत्रा, शीतल मल्होत्रा, तनवीर एंड अभू अनुभव बहामनी वाला डिस्ट्रिक्ट फाजिलका तो, वड़िंग खेड़ा पंजाब तो मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। और अगले दोस्त ने जी पिंड ते डाकखाना निमनाबाद नेड़े सफीदो मंडी जिला जींद हरियाणा तो, जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर ते करमजीत कौर। और अगले दोस्त हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता पिंड नथाणा बठिंडा तो। ते सारे दोस्त इस वक्त साडे नाल जाग रहे ने और प्रोग्राम दा मजा लै रहे ने। एक होर मैसेज पहुंचया हुणे हुणे गांव झगुड़ी जिला यमुनानगर तो, रणधीर बांगड़, गुरमेजो, गौरव, परवीन, युगम, वीरेन, मनकीरत ते मनराज। ते आओ जी महेश जी दी फरमाइश ते सुनदे आ किशोर कुमार दी ते आशा भोसले दी आवाज़ च फिल्म लवारिस दा ए गीत।

0: क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच एक सार्थक वार्ता हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
0: नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक आज दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। नई दिल्ली के बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों की कड़ी निंदा की। घोषणा में सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक और निरंतर प्रयासों के जरिए रोकने, उसका मुकाबला करने और उसे समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े, सुरक्षित, संकटों का सामना करने में सक्षम, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में डॉ मुर्गन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का उनका सफर एक सौभाग्य है। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि गुजरात में तीन नगर निकायों के चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है। नई दिल्ली में संवाददाताओं में श्री शाह ने कहा कि दो नगर पालिकाओं और एक नगर निगम की कुल 104 सीट में से भाजपा ने 90 सीट जीती हैं। उन्होंने बताया कि उनके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांधीनगर नगर निगम की 44 सीट से भाजपा को 38 सीट मिली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस को 41 वर्षों में भी एक चुनाव जीत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को SIR से जोड़कर खारिज करने की जगह कांग्रेस का आत्ममंथन करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आज शाम कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास के बाहर कथित तौर पर चाकू से हमला करने की कोशिश की गई। राज्यसभा सांसद डोला सेन के अनुसार तनिष्ठा साहा नाम की एक महिला ने कथित तौर पर ममता बनर्जी की साड़ी खींची और चाकू से उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल महिला को हिरासत में लेकर कालीघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने पैराग्वे में विश्व स्केटिंग गेम में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्ष स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। मौसम विभाग ने कल तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में तेज़ बारिश की बिजली गिरने और तेज़ हवाएं चलने का अनुमान जताया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में ओलावृष्टि की भी संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दोस्तों यहाँ जाने जी। हेलो
1: हेलो चरण सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम स्वागत है।
1: धन्यवाद सर जी, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। बहुत शुक्रिया जी। कौन गल कर रहे हो ते कित्थों गल कर रहे हो?
1: डेरा कलोनी फाइल का ते तरमा सागर बोल रहे हैं सर।
0: हाँ जी तरमा सागर जी, की हाल चाल ने तुहाडे?
1: बहुत बढ़िया सर जी, तुहाडा प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा
0: है। चलो बहुत शुक्रिया जी। तो पहली कॉल लग गई फिर आ जाए।
1: धन्यवाद सर जी।
0: कॉल मेरे ख्याल नंबर मिलाया तो नाल ही लग गया कि दो तीन बार ट्राई करना
1: था? नाल ही लग गया सर जी।
0: अच्छा नाल ही लग गया, चलो बहुत वधिया लगे जी थोड़े नाल गलबात करके। तो केड़े गीत की फरमाइश लेके आए हो?
1: इस नाल नछत्तर गिल से जसविंदर नूरला दा सर।
0: केड़ा गीत सुनेंगे?
1: इस नाल सारे सारे पिंड के ग्रंथ कढाए।
0: क्या
1: नखरे
0: ने? बिल्कुल ठीक है जी, मैं थोड़ी फरमाइश हूँ तो कुछ पलों के बाद पूरी करांगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
0: थैंक यू जी, थैंक यू। सो दोस्तों व्हाट्सएप मैसेजेस भी साढ़े तक पहुँचने शुरू हो गए हैं जी। साडा व्हाट्सएप नंबर है 9465536077, यानी कि 9465536077। और इस नंबर के उपर दोस्तों के मैसेजेस आ गए हैं जी। सब तो पहला मैसेज जिहड़ा साढ़े तक पहुँचा है, देखते हैं कितों आया। सो सब तो पहला मैसेज जिहड़ा साढ़े कोल पहुँचा है जी, है आज़ाद नगर लश्कर हरिद्वार उत्तराखंड तो भेजनवाड़े ने ताज मुहम्मद अंसारी जी। इन्हां दे नाल ने जी गुलाम साबिर राही ते महराज जहां। तो इस नाल एक मैसेज होर पहुँचा है जी, ये मैसेज आया है जलालाबाद वैसट तो, भेजा है सुरेश गगनेजा जी ने। इन्हों के नाम ने पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। तो इस नाल एक मैसेज होर पहुँचा है जी, ये मैसेज जड़ा है ये साढ़े तई आया है जी, गाँव उगाला जिला अंबाला हरियाणा तो, भेजन वाले ने राजेंद्र कुमार जी। इन्हों के नाम ने मलकीत कौर, आरती राणी, राघव, हरमन ते परिवार के सारे होर साथी। तो आओ जी फिर इन्होंने सारे दोस्तों की फरमाइश से सुनते हैं प्यारा जहा गीत।

बिल्कुल जी, गला गोरिया ते होंठ गुलाबी। ये तो जो कह रहे थे मोहम्मद रफी साहब के वास्तविक प्रोग्राम चल रहे जी सौगात। मैं थोड़ा दोस्त अरुण इस वेल्ले थोड़े नाल बनया हो और दोस्तों के मैसेजेस जिमें कि मैं पहले ही दस रहा लगातार साढ़े तीन साढ़े वट्सअप नंबर के उपर पहुँच रहे हैं। सो अगला मैसेज साढ़े तक पहुँचा है जी कृष्णा पार्क दिल्ली तो भेजा है सुखविंदर सिंह जोड़ा जी ने। इन्हों के नाल सिटी दीवाना तो गुरवंश सिंह जोड़ा और सुरेंद्र कौर तो प्रकाश कौर जी की आवाज़ में इन्होंने गीत की फरमाइश की है। तो आओ जी फिर इन्हों की फरमाइश पूरी करते हैं सगले प्यारे जी गीत के नाल।

बिल्कुल जी ज्यादा के बस दिल दारा चंगी तू नहीं कीती कीतन चकर ने छत्र गिल साहब दी आवाज ते बैठे प्रोग्राम चल रहा जी सुका ते अगला मैसेज साडे ते पहुंचा है जी गुलाम रोड हरगोबिंद नगर नवा शहर तो भेजा है सुरेंद्र संधु जी ने इन्हों के नाल ने जी अनीता संधु रोहित संधु रितेश संधु शिखा संधु प्रीतिशा संधु और मैक्स तो इस नाल ही एक मैसेज होर पहुंचा है जी ये मैसेज आया साढ़े को पटेल नगर मलोट तो भेजा है डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया जी ने इन्हों के नाल जी गीता राणी जाजोरिया गगनदीप जाजोरिया आरजू जाजोरिया तो गुड्डू तो आओ जी फिर इन्होंने दोस्तों की फरमाइश से सुनते हैं अगला प्यारा जहाँ गीत कंठ कलेर साहब के वास्ते।

सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना, हौ मैं विचो जाए। ए फरमान सच्चे गुरु दी सेवा करन नाल प्राप्त हुए लाभ बारे दर्शाउंदा है। होर भी फरमान है कि सच्चे गुरु दी सेवा कीत्या हर प्रकार दे फल दी प्राप्ति हुंदी है। हिरदे नू लगी जन्मा जन्मांतरां दी मैल भी मिट जांदी है, दूर हो जांदी है, क्योंकि उस प्रभु दा नाम पतिता नू भी पावन कर दिंदा है। सतगुर सेव सर्ब फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए। इस शब्द दा गायन कीता है भाई अमरीक सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने।

सतगुर सेव सर्व फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए। इस शब्द दा गायन कीता सी भाई अमरीक सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। अकाल पुरख प्रभु दातार दा किन्ना वड्डा गुण है कि आप ही सृष्टि नू पैदा करके

सा सेवा कीती सफल है, जित सतगुर का मन मन्ने, जा सतगुर का मन मन्या ता पाप कसम्मल पन्ने। इस शब्द गायन कीता सी भाई गुरमीत सिंह शांत ते उना दे रागी जत्थे ने। सच्चे गुरु दे सच्चे सेवक अकाल पुरख दे चरना विच नेता प्रति अरदास बेनतियां करदे ही रहिंदे हन ते उस प्रभु दे सोने चरना दा जाप करदे रहिंदे हन। सेवक की अरदास प्यारे, जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे। इस शब्द दा गायन कीता है भाई प्रभजोत सिंह बाली ते उना दे

सेवक की अरदास प्यारे, जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे। इस शब्द गायन की तसी पाई प्रभजोत सिंह बाली ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

श्री सरण कार्यसी प्रोग्राम भक्ति संगीत डेटा दी पंजाब प्रसारण सेवा का यह जलंधर केंद्र है। तो तुम सुन रहे हो आकाशवाणी पंजाब। इस वेले सवेर के 4 बज चुके हैं। तो आओ हूँ असं तुहानू श्री दरबार साहिब अमृतसर ले चलते हैं, जितों तुम सरवण करोगे शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण।

पौड़ी बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया। सतगुर विच आप रखे उन कर प्रगट आग सुनाया। सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे स्यों चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता।

राजापुर प्रजापुर सब संसार कूड़ मंडप्पा कूड़ माड़ी कूड़ बैसम कूड़ सोयना कूड़ उपा

0: साहब ससुआल जिनकी थी सो पार पिया ओ नानकर ते किया बाता योग किश करना सुकरया महला दूजा
1: योग शब्दन ज्ञान शब्दन भेद शब्दन ब्राह्मण
2: खत्री शब्दन सूर शब्दन सूदर्शन

हे कृष्ण सर्वदेवा देव देवता आत्मा आत्मा वासुदेव जे को जाने भयो नानक पिता का दास है सोई नरेंद्र देव महला पहला।

0: अब चल अटल आद पुरख फुरमायो।
1: गुण गावे रविदास भगत जय देव त्रिलोचन, नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन। भगत बेण गुण रवे सहजातम रंग माणे, जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जाने। सुख देव परीक्षित गुण रवे गौतम रिख जस गायो, कब कल सो जस गावो गुरु नानक, कब कल सो जस गावो गुरु नानक, नित नव तन जग छायो।
0: गुण गावे पयाल

जिन वेद व्याकरण विचार है, ब्रह्मा गुण उच्चरै जिन हुक्म सब सिट सवारे, ब्रह्मांड खंड पूरन ब्रह्म गुण निर्गुण सम जानियो, जप कर सुजा।

0: गुण गावे नवनाथ तन गुरु साज समायो माता दा गुण रवे जेन चक्कर में कहायो गुण गावे बलरा सपत पताल बसंता पार्थर गुण उच्चरे सदा गुर संग रहंता दूर बाप रूर अंगरे गुरु नानक जस गायो कब कल सजस नानक गुर कट कट सहज समायो कब कल सजस नानक गुर कट कट सहज समायो
1: कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन विद उस्तद

जो बन रूप माया मद माता बिचरत बिकल बड़ो अभिमानी पर धन पर अपवाद नार निंदा यह

बल बंच छप करत उपावा, पेखत सुनत प्रभ अंतर जामी, सील धर्म दया सुचनासित,

0: आप नारायण कलातार जग में परवरयो निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करयो जय कहत भरपूर शब्द दीपक दे पायो जय सिख संग रहयो तत हर चरण मिलायो नानक कुल निमल अवतरयो अंगद लहने संग हो गुरु अमरदास तारन तरन जन्म जन्म पासरन तो
1: जप तप सत संतोख पिख दर्शन गुर सिख शरण पर है ते उबर है छोड़ जमपुर की लिख भगत पाए भरपूर हृदय उच्च रह कर तार गुर गौ हर दरियाओ पलक डुबंत तारे नानक कुल निमल अवतरयो गुण कर तारे उच्च रह गुर अमरदास जिन सेवयो तिन दुख दरिद्र पर हर पर

आहु जिस पास बैठे आसो ही है सावना दावे साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सोरठ महला पहला जिस जल निध कारण तुम जग आए सो अमृत गुर पाही जीओ

0: जिस जल निध कारण तुम जग आई सो अमृत गुर पाही जियो छोड़ हो वेस भीख चतुराई दुबिदा एहो फल नाही जियो।
1: Thank you.

0: नानक मैं शरीर का एक राजिक रुतवा जुग जुग फेर उठाइया ज्ञानी बुझाता सतयुग रासन तो का धर्म के रतवा रहते राज्य का जोर रतवा द्वापे रतपे का सत गे रतवा
1: शाम कहे से तंबर स्वामी सच में ऐसे साच रहे सब को सस मावेरे कह रहा भरपूर राम नाम देवा मैं सूर नाय लय प्राश्त जाए नानक पौ मुखंत्र पाए जुज मैं जोर श्री चंद्रावल कान कृष्ण राधु भया पार जा गोपी लाया बिंद्रा बन में रंगी